0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
2: या ऑफ कोर्स।
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता हूँ,
3: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ,
3: अभी चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, या तू मजे ले रहा फोन करके?
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: अमाल मलिक अरिजीत सिंह की आवाज में साथ देते हुए तुलसी कुमार राइटर ऑन मिर्ची आप सुन रहे हो आफरीन को। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और अच्छे दिन आने वाले हैं बॉस, इसका तो आपको अंदाजा पिछले दो दिन में तो लग ही गया होगा। वेल, मैं तो मेरे अपने कतर के वेदर के बारे में बात कर रही हूँ। वो ऐसे कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार ह्यूमिडिटी कम हो गई है, मतलब दिन के वक्त तो भाई पूछो ही मत, मतलब देर इज नो क्वेश्चन अबाउट कि ड्यूरिंग द डे आपको कैसा महसूस हो रहा है। यस, ये ऐसा सिलसिला दिन वाला थोड़ा एक महीना और तक चलते रहेगा, लेकिन शाम के वक्त जो एक वक्त था जहां शाम के वक्त अगर हम बाहर निकल रहे थे तो पसीने पसीने हो रहे थे, गर्मी थी, यू कैन फील द वेदर टेम्परेचर हाई, बट दो दिन से कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है?
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: देखो वेदर जो है वो आंकड़ों में ये बता रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आज 44 डिग्री से रहेगा, लेकिन मिनिमम जो है 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ह्यूमिडिटी जो है कल से थोड़ी कम है, जैसे मैं बता रही थी कि कम होते जाएगी अब से, तो 57% पर है। लेकिन असली वजह क्या है ये सब कुछ अच्छा होने के पीछे, कि सुहेल स्टार, हर साल हम इसके बारे में बात करते हैं इस वक्त पर, और अब फिर से हम करेंगे कि अब टाइम आ गया है कि सुहेल स्टार अब नजर आने वाले हैं, इनफैक्ट आज से ही, और जिसके वजह से एक ग्रेजुअल ड्रॉप इन हीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाय, जो लोग आई एम श्योर बारबेक्यू करने के बहुत शौकीन होते हैं, बीच पर जाने के शौकीन होते हैं, आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट न्यूज यू हैव कम अक्रॉस। एंड ये लोग बहुत ज्यादा ठंड का वेट नहीं करते हैं, ये सितंबर वगैरह में ही ऐसे वक्त में ही निकल जाते हैं। आर यू वन ऑफ देम बाय द वे? इफ यस, आई वॉन्ट टू नो हु आर यू बाय द वे। चले फिर अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। बस इतनी सी बात थी वेदर की, बता दी आपको, अब अरिजीत सिंह की आवाज में गाना एंजॉय कर ले। माइक से दिल तक आफरीन के साथ, पर मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
2: नहीं यार, मेहनत तो है, मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने में।
1: किसी दिन वरदाना के पूछे पापा एक्टिंग या मैं?
2: ये क्या सवाल है?
3: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
4: ये थे विक्रांत मैसी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

वेल, यहाँ पर भी कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और बस इसी तरह से हमारे दिन की खूबसूरत शुरुआत हो। वैसे ये गाना जो है दिल तो पागले का गाना, 90s का गाना, आई एम श्योर वो एक फील गुड वाली जो एक फीलिंग होती है ना, वो ऐसे 90s के गाने से तो आ ही जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग कतर, मैं हूँ आफरीन। और देखिए भैया, बहुत सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग अच्छा वाला कह दूं आपको। अलीशान का यहाँ मैसेज है, इमरान का यहाँ मैसेज है, वेकी वेकी वॉइस बॉक्स मैजिशियन आरजे आफरीन सेंडिंग यू गुड वाइब्स एंड मैसिव अमाउंट्स ऑफ कॉफी फॉर टुडेज शिफ्ट। थैंक यू, मतलब भाई मैसेजेस में ही कॉफी भेज रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। Meanwhile, अगर आप भी गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं हमें, सो 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मीन एंड ऑल्सो आई हैव गॉट अ मैसेज हियर, निशा का मैसेज है सेइंग गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग एंड ट्रू दैट अबाउट अ 90s सॉन्ग। हाँ मतलब निशा तुम्हारा दिन तो बन गया है, मतलब बिल्कुल कि यार आज एकदम मेरे फेवरेट किंग खान के मूवी का गाना सुन लिया है, इज एक्चुअली किंग खान योर फेवरेट, और बस आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो वेल विद दिस वंडरफुल वन पॉजिटिव वाइब के साथ में शो को आगे बढ़ाते हुए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अरमान मलिक की आवाज में अनदर येट ब्यूटिफुल सॉन्ग, माइक से दिल तक आफरीन के साथ।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: यार, मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा हु?

0: 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आप सुन रहे हो आफरीन को एंड मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7 बजे के तरफ और नीति मोहन की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

दुल्हन की आवाज में ये गाना फ्रॉम गंगूबाई, गंगूबाई है ना मूवी का नाम? हाँ हाँ वो ही है. मूविंग अहेड विथ आवर शो. And boss, clearly as we can feel it, के अच्छे दिन definitely हमारे पास कतर में अब आने ही वाले हैं. Well, गर्मी का जो है सिलसिला कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है. And the biggest reason being के आज के दिन यानी 24th of August today, सोहेल स्टार इसकी साइटिंग होने वाली है. It is the second brightest star in the night sky after Sirius. और इसकी साइटिंग जब होती है ना तो उसके

क्या होता है, टेम्परेचर्स बिगिन टू डिक्लाइन ग्रेजुअली, स्पेशली अब ये रात के बाद की बात कर रही हूँ मैं, एक महीने का जो सिलसिला है ना, ये रात के वक्त अच्छा रहेगा, दिन के वक्त थोड़ा सा समझ जाओ अब तक के नहीं होगा, और जो इंटेंसिटी ऑफ द डेजर्ट विंड्स है वो भी थोड़ा सा ईज होने लगती है, नाइट्स ग्रेजुअली बिकम लॉन्गर व्हाइल डे लाइट आर शॉर्टन, और ट्रेडिशनली इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लिटिल मोर चांसेस ऑफ रेनफॉल. अब ये हुई ना बात, अब मैं वो दिन का इंतजार कर रही हूँ तो कि बस अब वेदर भी अच्छा हो जाए, बारिश थोड़ी हो जाए, कि बस मैं तुरंत भागू दोहा पोर्ट की तरफ. आई एम मिसिंग माई मीना पोर्ट, दोहा पोर्ट की तरफ मैं उस तरफ बैठती हूँ बाय द वे, जहाँ पर ना वो दोहा का स्काईलाइन दिखता है और खुला आसमान और समंदर, मतलब अनएंडिंग दिखते ही रहता है द वास्ट समंदर. आई जस्ट लव दैट सीन. वेल, जब मौसम अच्छा होता है कतर का, आप कहाँ जाते हो? डू यू गो टू सम बीच टू रिलैक्स, और इज देयर सम सीक्रेट स्पेस? मुझे बताइए ना, कहीं अच्छी वाली हो तो मैं भी वहाँ पर जाना शुरू करूँगी. 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर. वन लोकेशन इन कतर जब वेदर अच्छा होता है तो आप रिलैक्स करने जाते हो, टेल मी. और अगला गाना जो सुना रही हो, आई एम श्योर आप बहुत अरसे बात सुन रहे हो, बट दिस इज समथिंग रियली यू विल फील गुड आफ्टर लिसनिंग टू दिस ट्रैक. हरिमत सेजल का ये गाना, निकिता गांधी और मोहित चौहान की आवाज में, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है?
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई. रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है? अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
2: ओ मेरी बात,
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश.
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर.
2: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू.
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं.
1: अरे तो
2: जब डर गया
1: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना. और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ.
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला? तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: मैं फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर. और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है. तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा, तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है. सुनो, मैंने तुझसे
1: वाली बातें कर रहा
2: है? मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रहा. और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर.
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना.
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार.
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है.
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है. जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
1: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे. ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
2: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे. चल ठीक है, निकल तू
1: यार.
3: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: बंजारे का ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और
1: देखिए, हम रोज कम्यूट करते हुए कितनी चीजें बस पास कर देते हैं, मेट्रो स्टेशन की तरफ से गुजरते हैं, बस स्टेशन, बस स्टॉप, और वो डेली के लोग। बट कभी सोचा है क्या ये एक स्टेशन एक्चुअली एक दिन में कितने लोगों का मूवमेंट जो है मैनेज करता होगा? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज ना थोड़ा कतर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर्स में समझते हैं, बिकॉज जब नंबर्स सामने आते हैं ना, तब यू रियलाइज द स्केल ऑफ प्लानिंग हैपनिंग बिहाइंड आवर एवरीडे कम्यूटर। फॉर एग्जांपल, अल वकरा बस स्टेशन को देख लीजिए। एक दिन में अराउंड 11,000 पैसेंजर्स हैंडल करने की कैपेसिटी, 50 बसेस एवरी आवर, 9 रूट्स कनेक्टिंग 9 डिफरेंट डेस्टिनेशंस। और इंटरेस्टिंगली, अल वकरा का पार्क एंड राइड अल वकरा मेट्रो स्टेशन के एडजेसेंट है, सो बस मेट्रो और प्राइवेट कार्स को एक कनेक्टेड सिस्टम में साथ में लाने की ये प्लानिंग है। एंड हियर इज अ बिगर पिक्चर, कतर का पब्लिक बस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम सिर्फ अल वकरा नहीं, 8 मेजर बस स्टेशंस, 4 बस डेपो, 2,300 प्लस बस स्टॉप्स और 650 प्लस इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क है। सो वेल, नेक्स्ट टाइम जब हम किसी बस स्टेशंस को कैजुअली वी जस्ट क्रॉस, जस्ट रिमेम्बर, जो हम सिर्फ एक बिल्डिंग और कुछ बसेस दिखती है हमें, बिहाइंड दैट इज एक्चुअली अ मैसिव कोरियोग्राफी ऑफ पीपल, रूट्स एंड टेक्नोलॉजी की विच कीप्स आवर कतर एक्चुअली मूविंग, है ना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC Supply.

0: लकी अली के ये मैं मतलब वो जो हमें है ना वो ही कितनी लाइक सुकून देती है. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. या वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्रीन का साथ है राइट हियर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग्स पर एंड लकी अली की आवाज़ में. चलो मैंने आपका दिन शुरू किया है, बहुत अच्छा आपका दिन गुजरेगा, लेकिन अब टाइम आता है कि ये कम्युनिकेशन जो है वन वे से हो जाए टू वे. वेल यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन की जहाँ बात ही की, मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज भी आ गया. विशिंग यूर डे फिल्ड विद जॉय लाफ्टर एंड सक्सेस. थैंक यू हरपाल संधू, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग. और बस ऐसे ही अब गुड मॉर्निंग के मैसेजेस नहीं, लेकिन यू कैन सेंड मी आंसर्स. अब कौन सा आंसर भाई, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेलने का टाइम आ गया है. सो वेल आज का सीन क्या है, इट इज मंडे मॉर्निंग. मैंने सोचा आपका मंडे जो ब्लूज होता है, मंडे ब्लूज होते हैं, उसे मैं दूर करूं विद अ सिंपल सा सवाल. सो हियर इट गोस,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
0: हाँ, सीन टेस्ट का जो मेरा सवाल है वो ये नहीं है, ये तो म्यूजिक रही है. सवाल मेरा कुछ है वो है ये.
2: अंकल ये मकरंद भाई हैं, सब लोग इन्हें मैं कह के बुलाते हैं.
3: हेलो.
2: एटीट्यूड प्रॉब्लम.
3: इसको सब समझा दिया?
2: हाँ, सब कुछ बता दिया.
4: मेरे बारे में सब बता दिया,
2: सब कुछ क्लियर.
4: मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुंबर चटनी नहीं बना सकता. ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गोंद सकता. गैस चाहिए, चूल्हा नहीं चला सकता.
2: वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते. डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता. और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते.
0: बस दैट्स इट, बस इतना ही तो चाहिए. और थोड़ी कुछ डिमांड कर रहे हैं. 5000 1896 एंड आई सी सो मेनी मैसेजेस फ्लडिंग हियर. माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी समीर का कहना है, जबकि ये मूवी आई थी ना तब सुपर डुपर फ्लॉप थी बॉक्स ऑफिस में, इट जस्ट क्रैश्ड. बट समवेयर ना सीक्रेटली मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद थी यार. व्हाट अ केओटिक हिलेरियस मूवी दिस वाज. बहुत सारे मैसेजेस आर फ्लडिंग इन. 5000 1896 इज माय नंबर. आप जब तक के आंसर दीजिए, मैं अगले गाने की तरफ बढ़ती हूँ. मोहित चौहान अगेन वेलवेट सिल्की आवाज में. एक था टाइगर का ये गाना, तरन मलिक का साथ, और मिर्ची माइक से दिल तक आफ्टरनून के साथ. इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
3: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ हाँ वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
4: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
3: जैसे
4: तो
3: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। शी डजंट लाइक टू बी एंटरटेन्ड। और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया फाइनली शी इज बीन एबल टू इनकल्केटेड इन हर डेली लाइफ। और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने, बात करके समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
2: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: सचिन टंडन की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक ऐसा सवाल पूछा मैंने जिसकी वजह से यार आप तो एकदम ऐसे एक्टिव हो गए, आपके मंडे व्यूज क्लियरली उड़ गए। वेल कैसा सवाल था, क्या था, चलिए लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट में जरा सीन सुन लेते हैं और फिर उसकी मूवी का नाम जो है वो भी आप ही तो बताओगे।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट
2: इसको सब समझा दिया,
3: सब कुछ बता दिया,
4: मेरे बारे में सब बता दिया,
3: सब कुछ क्लियर।
4: मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुंबर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंथ सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं चला सकता।
3: वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते।
0: बस इतनी सी तो मांग है, ज्यादा थोड़ी ना कुछ ये मांग रहे हैं। वेल व्हाट अ हिलेरियस एंड कियोटिक मूवी, एज आई सेड कि बहुत ही मजे की मूवी थी ये। लेकिन ये कौन सी मूवी है ये, चलिए आपसे ही सुन लेते।
5: हाँ जी, मसाला।
0: दैट्स राइट,
5: द कॉमेडी किंग दर्शन।
0: ऑल राइट,
5: अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, परेश रावल, राजपाल यादव एंड मेनी अदर्स। थैंक यू।
0: बिल्कुल सही। और यहाँ पर लाइन ऑफ मैसेजेस आई हैव हियर, जैसे चार्ली ने मैसेज भेजा और ये भी बताया चार्ली ने कि ये जो है ये एक कौन सी मूवी, कहाँ का तो रीमेक है, साउथ की मूवी का। लेट मी सर्च चार्ली का मैसेज। चार्ली वेयर आर यू। यस, चार्ली का ये कहना है कि दिस इज मलयालम मूवी, बोइंग बोइंग का रीमेक था और डायरेक्टेड बाय प्रिया दर्शन। ऑफकोर्स दैट्स वाई इट इज सो हिलेरियस। वेल बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मुख्तार अली का आया है, भीम सिंह, अफरोज आलम, रोहित सहोता, त्रिशा, मोहम्मद यूसुफ खान, मुकुल, राम दिनेश, आलोक, समीर, पप्पू शाफी, मोहसिन, और सभी का जवाब एब्सोल्युटली राइट है, दैट इट इज गरम मसाला, अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम। वेल बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी इस मूवी में, चार एक्ट्रेसेस थी, लेकिन ऑनेस्टली पता नहीं चला कि भाई कौन है, क्या है, कोई रिकॉल नहीं आ रहा है उनका, क्योंकि इतनी उनकी एक्टिंग अच्छी थी हालांकि, लेकिन याद नहीं रही। So let's go ahead, गरम मसाले के गाने के साथ आगे सोनू निगम की आवाज में। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Mornings
0: with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
3: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8 बजे की तरफ। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं अरिजीत सिंह और पलक मुशल की आवाज में और मिर्ची साथ।
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

पहले इतने अच्छे गानों का सिलसिला जो यहाँ पर शुरू हुआ है, तो उसे बरकरार रखते हुए रेखा भरद्वाज की आवाज में ये अगला गाना साथ देते हुए राघव कौशिक मुसाफिर कैफे, जो बहुत ही ज्यादा पिछले महीने से एक महीने से ट्रेंड कर रहा है, एक OTT सीरीज है। अगर आपने नहीं देखा है विक्रांत मासे की, सो सम रोमांटिक साइड ऐसा कुछ देखना है, रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटी, तो दैट इज समथिंग फॉर यू। बट उसका गाना तो सुन लीजिए, बहुत प्यारा सा गाना है, अनमिर्ची इट्स हॉट। और तुरंत बाद एक ऐसा ट्रिविया लेकर आ रही हूँ एक ऐसे बॉलीवुड गाने का जो आपने करोड़ों बार सुना होगा लेकिन कभी ये ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा। तो यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज सिंपली आफरीन, अनमिर्ची इट्स हॉट।

इतने सालों से ये गाना सुन रहे हैं लेकिन कभी समझ ही नहीं आया। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और एक मजेदार बॉलीवुड ट्रिविया लेकर आई हूँ एक गाने को लेकर जो कुछ ऐसा है। ये गाना तकरीबन 20 साल से जो हम सुन रहे हैं लिरिक्स आज तक पूरे समझ नहीं आए। वेल यस, जब भी मेट का ये गाना मौजा ही मौजा, इस गाने के बीच जो कुछ लाइंस आती है कभी नोटिस किया है कि वो पंजाबी है ही नहीं। वेल यस, ये एक ट्रेडिशनल आसामीज नर्सरी राइम है एक्चुअली, टाटे बोहे बोहिरार दे। इसका मतलब क्या है ये भी मैं बताती हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट, इट्स वेरी क्यूट। आसाम में बच्चे बारिश के दिनों में ये राइम गाते हैं कि बेसिकली सूरज को बुलाने के लिए कि क्लाउड्स हटाओ, थोड़ी सनशाइन दो, हमें बाहर जाकर खेलना है। एंड यर्स द बॉलीवुड कनेक्शन हाउ इट केम यर, बिकॉज ये गाने के जो सॉन्ग अरेंजर हैं, ठीक है, ध्रुवा ज्योति पुकान, ये एक आसामीज है। एंड दैट्स हाउ एक पंजाबी गाने में इतने सालों से एक आसामीज राइम छुपी हुई है ये हमें पता ही नहीं था। तो चलिए अब ये गाना सुन लीजिए एंड नाउ यू कैन लिसन टू द आसामीज लिरिक्स एज वेल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके। सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये क्या मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
1: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमेशा रख लो, ये बीक मत रख लो हमेशा।
2: अरे यार
1: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
1: बताइए,
2: आप मुझे आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल, टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता. स्त्री मूवी का ये गाना, विशाल मिश्रा और सचिन जिगर का ये म्यूजिक, राइटर अन मिर्ची. और खूबसूरती तो क्या होती है, ये तो भाई वो कहते हैं ना, द ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर. तो बस जिसके नजर से देखा जाए और उसको वही खूबसूरत लगे. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखते ही देखते हम कितने करीब आ गए हैं इस तारीख के. वेल 24th ऑफ अगस्त ऑलरेडी आज है और मैं सैलरी के दिन की बात कर रही हूँ. जस्ट इन फ्यू डेज आई एम श्योर ये जो आखिरी के दिन होते हैं ना, बहुत इंतजार होता है. सो वेल एक्सचेंज रेट पर जरा नजर रख लो, कभी काम में आ सकता है. देखिए आज का एक्सचेंज रेट ये कह रहा है, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.24, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.19, व्हेयरएज बांग्लादेशी टाका की बात करें इट इज एट 33.49, श्रीलंकन रुपीज ऑन द अदर साइड इज एट 90.44 और नेपाली रुपीज इज एट 41.90. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, नंबर वन फॉर्मूला 89.6 मिर्ची 1 पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

तू किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live in

0: वेल, ये गाने की सबसे खूबसूरत बात इज नॉट ओनली शमिता शेट्टी बट है आशा ताई की आवाज। मेरे यार की शादी से ये गाना, शमिता शेट्टी का बॉलीवुड का जो करियर बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहा है, लेकिन आई थिंक सो दिस पर्टिकुलर सॉन्ग रियली मेड हर एंटायर करियर, जो भी था छोटा मोटा सा था, लेकिन ये एक गाना है। देन एक और एक गाना था जो उनका बहुत फेमस हुआ था, एंड दैट वॉज बरस जाए बादल बरस जा। एंड कैसे ना मैं आपको एक एकदम उठा के सीधा नॉस्टैल्जिक एरा में एक लेकर चले जाती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड इट्स टाइम टू ओपन माय मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। वेल, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स से आज एक ऐसा गाना निकला है, ठीक है, जो कोई मूवी का नहीं है। वो क्या है वो शायद सुन के आपको पता चलेगा। ये एक कोई 90s का ही एरा का ये उसका कोई थीम सॉन्ग है कोई सीरियल का, ठीक है। आवाज़ बहुत पॉपुलर, गाना भी पॉपुलर, लेकिन ये सीरियल का नाम आपको याद आता है क्या? लेट्स हैव अ लुक। 5000196 इज माई नंबर और ये सुन लीजिए।
1: हाय, दिस इज केके, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।
0: ओके।

डोंट टेरिफाई, सिंपली टेरिफाई, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. आगे आपको बताना है ये कौन सा सीरियल है भाई. हमने एज अ स्कूल किड ये बहुत देखा था और इसमें जो ये बंदा था ना वो बड़ा कूल लगता था. बताइए 5000186 व्हाट सीरियल इज दिस, एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स विच इज रॉन्ग आंसर्स एज वेल. यही तो मजा आता है मुझे जब गलत आंसर भेजते हो आप. चलिए अगला गाना सुनते हैं मीनवाइल. One of my favorite another track, Shekhar Ravjiani ki awaaz mein Zeh Naseeb ka recreated version. Have a look.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
2: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
4: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
3: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live

0: पता नहीं।
1: पता था मुझे कि आपको नहीं पता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और मेरे ख्याल से बढ़ती उम्र के साथ थोड़ी याददाश्त भी हमारी कमजोर होते जा रही है। 90s को अब ऑलमोस्ट 25-30 साल हो चुके हैं। सो बस 90s की कुछ यहाँ बातें कर रही थी, जहाँ मैंने एक सीरियल का गाना सुनाया था। आज हमारे मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स से कुछ ऐसा निकला था। Well, we watched quite many TV serials those days, gone golden days those days. तो ये एक गाना सुन लीजिए और मुझे बताइए कौन सा सीरियल का है।

0: don't clarify, simply clarify, and I'm not going to go ahead. क्योंकि ये गाना ना जब आता था हम स्कूल कॉलेज में थे के की आवाज में था. I remember the entire lyrics. नजार में So I've got a lot of answers here. और कुछ सही है कुछ गलत है. किसी का कहना है शाकाला का बूम बूम. नो इट्स नॉट शाकाला का बूम बूम. लेकिन क्या है ये. लेट्स हियर इट.
1: हेलो माय नेम इज सलमान.
0: हां सलमान.
1: नेम ऑफ द सीरियल इज जस्ट मोहब्बत.
0: दैट इज राइट. इट इज जस्ट मोहब्बत. जहां वो बच्चा पहले स्कूल में था फिर बाद में वो बड़ा हो जाता है और वो वत्सल सेठ आई थिंक सो आई एम राइट. यस घारी आंख वाला वो कॉलेज का अपना कॉलेज गोइंग बॉय का रोल प्ले करता है. सो यस कुछ 90s में हम डाइव करते हुए फिर से प्रेजेंट में आते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. बेनी दयाल और शालमली कोलकड़ी की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
1: Visit Suzuki Qatar showroom by Tehsil Motors, Airport Road, Doha.
2: हाँ भाई, मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
3: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब क्या करूँ भाई मैं?
3: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
3: Well, Mirchi Mornings पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा

संजू राठौर की आवाज में ये गाना राइटर ऑन मिर्ची एंड संजू व्हेनेवर आई लिसन टू योर ट्रैक आई एम रिमाइंडेड ऑफ माय स्वीट स्वीट मुंबई। भाई मुंबई की छोरी हूँ, मुंबई की लड़की हूँ, तो बस ये मराठी गाने ना बिल्कुल दिल को छू जाते हैं मेरे। देखो अभी कुछ जरा कतर की बातों पर आते हैं, तो अगर आपके फोन में कैमरा है इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट बन जाए, स्पेशली वो लोग जो रील्स बहुत बनाते हैं। वेल कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर दिया है। वेल इट्स अ रिमाइंडर, दिस रूल हैज ऑलवेज बीन देयर एंड आपको पता है, लेकिन कभी कभार रिमाइंडर्स ना जरूरी होते हैं जिंदगी में कि किसी प्राइवेट प्लेस में किसी इंडिविजुअल को बिना कंसेंट फोटोग्राफ या रिकॉर्ड करना एब्सोल्युटली आपको लीगल ट्रबल क्रिएट कर सकता है आपके लिए। और पब्लिक प्लेस में भी किसी की फोटो या वीडियो को इंसल्ट या डिफेम करने का इंटेंशन से कैप्चर या सर्कुलेट करना भी ऑफेंस हो सकता है। और अब वो डिटेल जो हेडलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट कतर पेनल कोड के आर्टिकल 333 के करंट टेक्स्ट में पेनल्टी अप टू 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर 10,000 कतरी रियाल फाइन या फिर दोनों में से कोई एक तो हो ही जाएगा। वेल यही एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप अपना कैमरा निकाले, कुछ शूट करे, कोई पब्लिक प्लेस में है, तो ध्यान में रखिए किसी के परमिशन के बगैर उन्हें इंक्लूड ना कीजिएगा, बिकॉज कंसेंट इज नॉट जस्ट गुड मैनर्स एनीमोर, इट्स डिजिटल एटिकेट विथ लीगल कॉन्सिक्वेंस। मैं हूं आफरीन आपके साथ, और अगला गाना जो मैं बजा रही हूँ हमारे लिसनर शौकत के लिए बजा रही हूँ, जिन्होंने हमें अभी कॉल किया था और एक गाना रिक्वेस्ट किया था। तो चलिए 90s का ये गाना लता जी और उदित नारायण की आवाज में

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Yabala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Con?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तू इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज़ें आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा, तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
2: आपने सही कह रहा
3: है। हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत, ठीक है? मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है आपसे।
3: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
2: सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: ओके।
4: I love you too. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

Well, गणेश हेगड़े की आवाज में ये गाना, what a song यार, one time wonder कहते हैं ना, बस ऐसे ही ये गाना था which has stayed with us, but इसके बाद ना इसके पहले ना कुछ गाना आया गणेश हेगड़े का, ना मुझे लगता है कभी आएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट इज मंडे एंड मंडे ब्लूज को हम बिल्कुल भी आपके पास ना भटकने भी नहीं देंगे। चले आपके दिन को, चले एक अच्छी खुशखबरी से मैं आपके दिन की शुरुआत करती हूँ। वो ऐसे कि आपको कहीं ना कहीं महसूस तो हो रहा होगा ना कल शाम से कि हाँ शाम को बाहर निकले थे, पसीने नहीं आए। तो बस वजह बताने के लिए आई हूँ कि सुहेल सीजन जो है, द साइटिंग ऑफ द सुहेल स्टार विच इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार, वो आज से ही होने वाला है, विच इज अ क्लियर साइन एंड इंडिकेशन कि बस अब से गर्मी के दिन जो है धीरे धीरे से ही सही, स्लोली स्लोली, लेकिन ये जरूर दूर होंगे। और बस उसके बाद क्या है, बस अपने वो अच्छे वाले दिन हमारे कतर में शुरू होंगे जहां बाहर घूमेंगे फिरेंगे, सारे आउटडोर एक्टिविटीज करेंगे। एंड कतर अपने आप ना ऐसे वक्त में बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज लेकर आता है, द बलून फेस्टिवल, देन वी हैव द फूड फेस्टिवल एंड मैनी थिंग्स, देन F1 रेस है नवंबर में एंड सो मैनी थिंग्स। लेकिन मेरे लिए ना मैं बताऊँ, ये सारे इवेंट्स एक तरफ और मेरा और दोहा पोर्ट का रिश्ता एक तरफ, मतलब जब वेदर अच्छा हो जाएगा ना तो हर 15 दिन में ना कहीं आप मुझे वहां पर जरूर पाओगे। एंड स्पेशली वो टाइम पर जब सुबह का वक्त होता है, मैं वहां पर ना सुबह जाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई लाइक टू सी द ब्लू स्काई एंड द टील ब्लू ओशन आउट देयर। हाय, मतलब यार आई एम जस्ट मिसिंग माय दोहा पोर्ट करेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। मित्रास की आवाज, अख है गुलाब, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ऐसा आपने कहना चाहिए ना मुझे। माइक से दिल तक आप चीने, आपके साथ अनवर चीज़

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: उदित नारायण की आवाज और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज का साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। और आज कुछ बातें करते हैं खामोशी से खामोशी पर। कभी सोचा है हम कितनी बार सिर्फ इसलिए बुरे नहीं बने क्योंकि हमने जवाब नहीं दिया, वरना जवाब तो था, कहने को बहुत कुछ था, बस हमने हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। और शायद इसी को मैच्योरिटी कहते हैं, जब आपके पास लव्स भी हो, वजह भी हो, फिर भी आप खामोशी चूज करें। और आज आफरीन की डायरी से आज के अल्फाज खामोशी के नाम।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: कि थी खामोश फितरत हमारी, थी खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गए हैं। हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नजर में बुरे रहे। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नजर में बुरे रहे। हम जो सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और बस आज के लिए इतना सा। हर खामोश इंसान के पास जवाब नहीं होता, ऐसा नहीं है, कभी कभी उसे बस अपना सुकून बस ज्यादा प्यारी होती है। माइक से दिल तक आफ्टरीन है आपके साथ और मिर्ची इट्स हॉट।

वेल अनु जैन की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, और हो गया है हमारे जाने का वक्त। मंडे ब्लूज के साथ मैं हमने शो की शुरुआत की थी कि चलिए अब ऑफिस जाना है। भाई मंडे का दिन सबसे ज्यादा खराब लगता है कि कहीं इधर के ना उधर के ना बीच के ना कहीं के, बस दिन शुरू होके या फिर हफ्ता शुरू होके कह सकते हैं कि बस कल का ही दिन हुआ था, और अब हम ऐसे सिचुएशन में आ गए कि आज का दिन तो पूरे प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है। तो बस हमने हमारा काम कर लिया, यहां से पॉजिटिविटी का डोज आप तक पहुंचाने का काम कर लिया कि बस अब आपने जो है अपने दिन की शुरुआत जो है कर ली है, और उम्मीद करती अच्छे से कर ली होगी। अच्छे वाले गाने, मजेदार बातें, गेम्स, मस्ती, हर चीज हमने कर ली, और कल फिर से आएंगे हम बिल्कुल हफ्ते के बीच को हल्का फुल्का बनाने के लिए। राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स, आफरीन है आपके साथ। और जहां मिर्ची की बात, जाते जाते कहना चाहूंगी कि बैक टू स्कूल का हर जगह क्रेज चल रहा है। आप मॉल्स में जाइए, जहां जाइए, सोशल मीडिया खोलिए, इट्स ऑल बैक टू स्कूल एवरीवेयर। बट दिस बैक टू स्कूल का असली एसेंस शुड रीच आवर किड्स, और हमारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। That's the whole point, right? और मिर्ची से बेहतर ये कौन कर सकता है? So all you have to do is, अगर आपके बच्चे हैं 6 से 12 साल की उम्र के बीच, तो बस एक मैसेज भेज दीजिए WhatsApp पर 5001896 is our number। Back to school लिखिए, अपने बच्चे का नाम और उम्र लिख लीजिए, और मैं आपको लिंक भेजूंगी राइट नाउ, अभी के अभी। सो इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट विद अस, इट इज गोना हैपन ऑन 27th, यानी ये थर्सडे होने वाला है शाम को, 27th ऑफ ऑगस्ट, बैक टू स्कूल मिर्ची का इवेंट, दमदार, मजेदार, जबरदस्त। तो बस 5001896। Meanwhile, लेती हूँ अलविदा, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, बेहद ज्यादा जरूरी है जिंदगी में खुश रहना और खुशियां बांटना। तब तक के लिए बेनी दयाल और शर्ली सेठिया की आवाज में अगला गाना डिस्को डिस्को, एंजॉय करते करते गाड़ी चलाइए। और मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
1: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

रजत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़, फिल्म का नाम हाफ गर्ल फ्रेंड, लेकिन सच कह रही हूँ राधे दिल को तोड़ने का काम जो है ना यार ये गाना ज़रूर करता है। मतलब यार ब्रेकअप हुआ है ना अगर लाइफ में या किसी उदास फेस से चल रहे हो ना भाई, ये गाना आपकी फीलिंग को रीएम्फसाइज करने में कहीं कोई कमी ना छोड़ेगा। यही तो है म्यूज़िक का पावर, दर्द खुशी प्यार हर फीलिंग को महसूस कराना आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है।

0: वैसे एक बात बता दूं, इस वक्त अगर फीलिंग्स को महसूस कराने की बात करूं तो आपकी जिंदगी में अच्छे वक्त की फीलिंग को मैं भी जरा महसूस कराई दूं, क्योंकि अगर टाइम को देखने की कोशिश करेंगे तो मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9:08.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Well, इसके साथ ही अच्छा वक्त आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है. मैंने जो दस्तक यानी कि एंट्री मारी ली है. Absolutely very very good morning. Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आज मंडे के दिन शो की एक बार फिर से शुरुआत करने की कोशिश जो है मैं कर ही लूँ. अगर आज की तारीख को देखने की कोशिश करूँ तो भैया टुडे इज 24th of August एंड आज से ठीक एक दिन के बाद कुछ बहुत ही खास आपके और हमारी जिंदगी में शामिल होने वाला है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनम. मतलब जितने भी लोग केरला से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साउथ इंडियंस हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल मस्ट बी रियली एक्साइटेड. देखो यार, हम जो है नॉर्थ इंडियंस हैं. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली फ्रेंड्स भी हैं जो ओनम का इंतजार जो है ना दिल खोल के करते हैं. रीजन ये होता है, ये जो डिलिशियस मील एंड स्प्रेड सद्या जिसे कहते हैं भाई, जब जब ये मेरी आंखों के सामने आता है ना, सच कह रही हूँ, दिल जो है खुशी से गदगद हो उठता है. एंड ओनम एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका सेलिब्रेशन एक दिन नहीं, आई एम प्रीटी श्योर 1-2-3 महीने चलता है. एंड खासकर ओनम की फेस्टिविटीज हर दिन, भैया तुम्हें कितने इनवाइट आते हैं, तुम लोग कितनी जगह वो सद्या खाने जाते हो. आई एम रियली वेरी जेलस ऑफ यू यार. मतलब अगर लगे कि दोस्त यार किसी को साथ में लेकर चलना है, मुझे 101% लेकर चलो. आई एम अ बिग फैन ऑफ ओनम सद्या. इनफैक्ट आपको एक बात बताती हूँ, लिटरली माई माउथ इज वॉटरिंग एट द मोमेंट. अभी मैं केरल गई थी, लास्ट मंथ की बात है. वहाँ पे आई हैपन टू विजिट तिरुवनंतपुरम, ट्रिवेंड्रम. ट्रिवेंड्रम में एक जगह है जिसका नाम है मदर्स वेज प्लाजा. नाउ दिस रेस्टोरेंट इज फेमस इन द इंटायर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर ओनम सद्या. इनफैक्ट नॉर्मल सद्या एज वेल, क्योंकि साल के 12 के 12 महीने यहाँ पे जो सद्या आपको अवेल की जाती है भाई, इसका कोई तोड़ मुकाबला नहीं. जितनी वेराइटीज डिशेज की, जितने प्यार से आपको खिलाते हैं. चार तो मैंने वहां पे पायसम खाए और बोलूं तो क्या ही बोलूं. तो बाई एनी चांस अगर आप ट्रिवेंड्रम जा रहे हैं, मदर्स वेज प्लाजा ये जगह आपको एक्सप्लोर जरूर करना है. एंड जितने भी साउथ इंडियंस हैं भाई, मुझे हाय हेलो कर दो अगर ओनम की खुशी आपकी जिंदगी में भी है तो. 5000 1896 ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल सुबोध शर्मा की आवाज इन्हें अगला प्यारा सा गाना एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La firma la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन।
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो, जब डर गया था तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने
2: वाली बातें कर रहा है क्या?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
2: यार।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Presented by Balana Milk Lavan Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon. Powered by iPay.

0: फहीम अब्दुल्ला की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज सियारा एंड दिस टाइटल ट्रैक, ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है जो हर किसी बच्चे के नोटबुक पे लगने वाला है, जरा उसकी बात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: हालो वेलकम बैक। इतना बता दूं, अब अगर नए टाइटल की बात करें तो वो हो चुका है फुल्ली अपग्रेड। वैसे ये काम तो इंडियन स्कूल्स के बच्चों के लिए अप्रैल के महीने में ही हो गया था, एंड अगर इंटरनेशनल स्कूल्स के बच्चों की बात करें तो उनका नया सेशन, नया ईयर जो है अब 30th of August से शुरू होने वाला है। यार ये जो जर्नी है ना, ये बड़ी कमाल है। द सेम टाइम इट इज़ वेरी इमोशनल जब हम ये नोटिस करते हैं कि बच्चे जो हैं यार अब बड़े हो रहे हैं, एक साल और अपनी उम्र में आगे बढ़ते हुए एक नई क्लास में दाखिल होने जा रहे हैं। यार बड़ी खूबसूरत सी जर्नी है यार। अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूँ तो कहीं ना कहीं खुशी होती थी कि मम्मा अब जो है ना मैं 5th से 6th स्टैंडर्ड पर पहुँच चुकी हूँ, अब तो मैं प्राइमरी का हिस्सा ना रही। लगता है कि उस समय जितनी हड़बड़ी एंड जल्दी हुआ करती थी कि कैसे कैसे जल्दी 12th क्रॉस हो, उसके बाद मैं कॉलेज जाऊँ और मैं इंडिपेंडेंट पैसे कमा के अपनी ज़िंदगी जीऊँ। कितने मासूम और नादान थे ना हम कि हम ये कभी समझ ही ना पाए यार, हम तो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर अब जी रहे हैं। काश ऐसा कोई मौका मिले कि मुझे फिर से कोई स्कूल के दिनों में वापस भेज दे। सच कहूँ, ज़िंदगी जिस बेफिक्री के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ हमने उस दौर में बिताई है ना, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी का कोई और लम्हा कभी हमें उतनी खूबसूरत यादें दे जाता है। तो इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे इस वक्त अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उन्हें अपनी लाइफ की बेस्ट फेज को बहुत अच्छी तरह से जीने दें। ऑफकोर्स उनकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उनका करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी ही ज़रूरी ये बात है कि इन दिनों को जितनी मस्ती में अपने दोस्त यारों के साथ अच्छी तरह से मिल के बिता सकें ना, वो ये काम ज़रूर करें, क्योंकि आपकी और हमारी तरह ये यादें उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक होगी। अगर ये बात सच है, इसमें दम है, तो मुझे ना एक वो थम्सअप या थैंक यू अंशु वाला मैसेज चाहिए। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल साज भट्ट की आवाज़ सुबोध शर्मा के साथ अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

Well, Shilpa Rao ki awaaz, Mello ka saath, Vishal Shekhar ki power pack composition, and what a lovely track it is. वैसे इश्क जैसे कुछ की बात करें तो यहाँ पे कोई तो दास्तान मुझे याद आती है.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंश विद यू। जिंदगी में अगर सबसे खूबसूरत एहसास की बात करें तो भाई शायद वो एहसास होता है जब आपको पहली बार लाइफ में किसी से इश्क या प्यार या मोहब्बत होती है। यार सच कहूँ, हमने ना जब पहली पहली दफ़ा ये फीलिंग महसूस की थी ना, वो बटरफ्लाइज जेन्युइनली किसे कहते हैं, ये बात आपको और हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर इश्क इस शब्द को आप सोचने की कोशिश करें तो ये लफ्ज़ जो है ये काफ़ी छोटा है, लेकिन इसके अंदर पूरी एक दुनिया जैसे समेटे हुई है। किसी के लिए इश्क साथ है तो किसी के लिए इंतज़ार, किसी के लिए सुकून है तो किसी के लिए बस एक खूबसूरत सी याद। और शायद इश्क की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसे हर बार हासिल करना ये ज़रूरी नहीं यार। कभी कभी किसी का ख्याल आपके दिल में और आपके दिल को मुस्कुराने की ना सबसे बड़ी वजह दे जाता है। वो कहते हैं ना कि इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, इश्क वो है जो खामोशी से निभाया जाए। वो पास हो तो हर लम्हा खूबसूरत लगे, और दूर हो तो उसी के ख्याल से दिल जो है वो बस मुस्कुराए। अब मुझे ये बताना कि जब ये मैंने सारी बातें कही तो आपके जहन में ख्याल आया तो आखिरकार किसका आया? हर किसी के लिए इश्क प्यार मोहब्बत के मायने जो है ना, ये काफ़ी अलग होते हैं। शुरुआत अक्सर इसकी खुद से होती है एंड उसके बाद किसी एक शख्स पर जाकर ये सफ़र ज़रूर ठहरता है। तो जब मैं ये बात कह रही थी तो आप किसके बारे में सोच रहे थे? 5000186 5000186। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल लकी अली की आवाज़ में अगला प्यारा सा गाना आपके रास्ते। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज फिल्म का नाम लापता लेडीज है। इस गाने में वो हर एक बात है जो इंश्योर करें हम जो है ना इसे सुनते वक्त कहीं ना कहीं खो जाएं, कहीं तो लापता हो जाएं।
1: मिर्ची अंशु
0: हाला, लेकिन आपको इस बात से लापता बिल्कुल ना होना है और इसका पता ठिकाना जो है ना फटाफट से लगा ही लेना है। वेल, इस वक्त अगर मैं कदर को देखने की कोशिश करूँ तो एक ऐसे अवार्ड एंड रिकग्निशन की अगर हम बात करें जो इंश्योर करता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में जितने लोगों ने अच्छा काम किया है उनके काम को ना ही सिर्फ सराहा जाए बल्कि देश दुनिया तक बढ़ चढ़ कर उनकी बातों को पहुँचाया जाए, तो भैया ये काम हमारी ज़िंदगी में कोई कर रहा है तो वो है कतर टूरिज्म। एंड अब एक बार फिर से अगर कोई मुहिम शुरू हो चुकी है, चालू हो चुकी है, तो वो है कतर टूरिज्म अवार्ड्स की। एब्सोल्युटली वो है, दैट राइट। चलिए, अगर अभी तक आपने अपने आप को इस कैटेगरी में दाखिल नहीं किया जो इंश्योर करती है कि आपका काम बहुत अच्छी तरह से लोगों की नजरों तक पहुंचे, तो अब कर लें, क्योंकि 16th of September वो आखिरी तारीख है जब आप कतर टूरिज्म अवार्ड्स के लिए खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से कतर टूरिज्म की वेबसाइट पर जाएं, पूरे की पूरी डिटेल्स जो है वहां पर चेक करें। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार एक स्पेशल कैटेगरी भी अनाउंस की गई है एंड वो है इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड। वो सारे लोग जो अपने कंटेंट से कतर की खबरें देश दुनिया तक पहुंचाते रहे, कतर की खूबियों को दुनिया तक लाते रहे, भैया आपकी बार तुम्हारा नाम भी पक्का है कि देश है ना तुम्हारे एफर्ट्स को रिकग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे। प्लीज गो एंड चेक ऑल द अवेलेबल कैटेगरीज एंड इंश्योर यू आर रजिस्टरिंग योरसेल्फ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल फर्दर बूस्ट यू अप टू परफॉर्म इवन बेटर एंड इंश्योर देश दुनिया को पता चले कि हमारा कतर और हम सब कितने कमाल। वरुण जैन की आवाज़ इन्हें अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: अरमान मलिक की खूबसूरत सी आवाज़, श्रद्धा कपूर का साथ, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। वैसे अब जो है ना, ये मौका बिल्कुल आपका है, तुम्हारा ही है।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: भैया गए वो दिन जब बच्चों को स्कूल वापस भेजना हो, इसकी तैयारी जो है माँ बाप नहीं बच्चे खुद किया करते थे। रात रात भर अपनी नोटबुक में कवर चढ़ाया करते थे। एंड भैया कवर चढ़ाने के बाद नोटबुक के पहले पन्ने में बकायदा अपने नाम के साथ, अपने क्लास के साथ, अपने सेक्शन का भी नाम स्पेसिफाई किया करते थे। अपनी फेवरेट वाली वो नेम प्लेट याद है, मेरी बारबी थी, आपकी वो भी हम लगाया करते थे। पेरेंट्स को प्रेशर नहीं देना पड़ता था कि बेटा चलो बैक टू स्कूल की तैयारी कर लो। आज का जमाना बड़ा अलग हो गया है। जब तक बच्चों को कोई एंटरटेनिंग एक्टिविटी ना कराओ, घुमाओ फिराओ ना, डिस्काउंट में शॉपिंग ना कराओ, तब तक बच्चे जो है बैक टू स्कूल के लिए तैयार नहीं होते। तो बस ट्रेडिशन को फॉलो करना, परंपरा कायम रखना हमारी जो ना आदत है। यानी बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कतर के सबसे बड़े बैक टू स्कूल सेलिब्रेशन की बात करें, सबसे एंटरटेनिंग बैक टू स्कूल सेलिब्रेशन की बात करें, तो ये मुहिम आपकी जिंदगी में अगर कोई लेकर आता है तो वो है हम। ना खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जब बात सच्ची और अच्छी है ना तो कर ही देना चाहिए। Having said that, अगर आपको लगता है कि आपको भी मिर्ची बैक टू स्कूल इस इवेंट में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है, विच इज स्केड्यूल्ड फॉर 27th of August, सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? आपको एक ही काम करना है, फटाफट से हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी कि 5001896 पर हाई अंशु ये मैसेज भेजना है, और मैं जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको पक्का भेज दूंगी। हाई के बदले बाय बोला तो ना भेजूंगी, ये भी याद रखना। वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग ऑल द लवली किड्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिनोमिनल इवेंट बैक टू स्कूल बाय मिर्ची। अरिजीत सिंह की आवाज एंड अगला प्यारा सा गाना, एंजॉय बंदी गाना अंशु।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
2: ठीक ही कह रहे हो।
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखना,
3: थोड़ा ख्याल रखना, मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार।
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
3: अच्छा अच्छा,
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे तो मजा आ रहा है, यार तू मजे ले रहा फोन करके?
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: बलदर्शन रावल एंड अंतरा मित्रा की खूबसूरत सी आवाज़ और बड़ा सोलफुल ट्रैक है उसे यार, क्या खूबसूरत सा गाना। वैसे ये प्यारे से गाने और अच्छी अच्छी बातें आपकी जिंदगी में लाने का काम कौन करता है?
1: मिर्ची अंशु।
0: हाला चलिए, गाने तो मैं सुना ही देती हूँ, अच्छी बातें भी मैं कर ही देती हूँ, आप भी तो कोई काम करें। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, एक ही काम करते हैं। अंशु की पहली का दे देते हैं जवाब। एब्सोल्युटली। एक बार फिर से कोई तो क्विज है जो मैं आपकी जिंदगी में पेश करने वाली हूँ। आपको इस पहले को गौर से सुनना है, बुझाना है, साथ में मुझे ये बताना है कि आज मैं किस डिश, खाने के उस कौन से आइटम की कहानी बयां कर रही हूँ। एंड एज यूजुअल, अगर करेक्ट आंसर पता चल गया तो फटाफट से भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हिच इज 5000 1896, 5000 1896, एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज। हियर वी गो। ना मैं बर्गर ना सैंडविच कहलाऊं, फिर भी दो हिस्सों के बीच मैं नजर आऊं, अंदर मेरा आलू वाला दिल, साथ में चटनी और मिर्च का थ्रिल, मुंबई की गलियों की मैं हूं जान, बताइए क्या है मेरा नाम। ना मैं बर्गर ना सैंडविच कहलाऊं, फिर भी दो हिस्सों के बीच में नजर आऊं, अंदर मेरा आलू वाला दिल, साथ में चटनी और मिर्च का थ्रिल, मुंबई की गलियों की मैं हूं जान, जरा बताओ क्या है मेरा नाम। जल्दी से आंसर भेजो 5000 1896। मीनवाइल अक्षत की आवाज इन प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
1: कैसे?

0: शान एंड गायत्री अय्यर की प्यारी सी आवाज एंड नेचुरली इस गाने को सुनने के बाद ना माय दिल डेफिनेटली गोज
1: मिर्ची अंशु।
0: लेकिन ये बात तो तय है कि इसको खाने के बाद 101% आपको और हमारा दिल और मन जो है ना वो ये जो है वो जरूर होता है। मतलब से कुछ देर पहले एक पहेली मैंने आपके बीच पेश की थी और आपको आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये पहेली किस खाने के आइटम की यानी कि डिश की कहानी बयां कर रही है। फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, अभी भी सुनते सुनते अगर सही जवाब पता चल जाए तो मुझे भेज देना 5000186 पर। अब भाई ये कहते हैं ना मैं बर्गर हूं ना मैं सैंडविच कहलाऊं, फिर भी दो हिस्सों के बीच अक्सर नजर आऊं, अंदर मेरा आलू वाला दिल, साथ में चटनी और मिर्च का थ्रिल, मुंबई की गलियों की मैं हूं जान, बताइए क्या है मेरा नाम। जरा देखें लोगों का क्या कहना है।
2: हाय गुड आफ्टरनून, ये पाव भाजी भी हो सकता है और गोलगप्पे भी हो सकता है, दोनों में सिमिलरिटी। ठीक है,
3: गुड मॉर्निंग अंशु, कार्तिक हियर, द आंसर इज वड़ा पाव।
4: मेरा नाम है वड़ा पाव, वड़ा पाव, यू आर टॉकिंग अबाउट वड़ा पाव।
0: हाय हाय, इतने मेलोडियस अंदाज में जो लोगों ने वड़ा पाव का नाम लिया ना, समझ सकती हूँ सारे के सारे मुंबईकर्स क्या कोई भी इसके कितने बड़े फैन हैं। ना जी ना, ये पाव भाजी तो नहीं, गोलगप्पा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ अगर सैंडविच या बर्गर के रिजेम्बलेंस की बात करें, इंडियन डिश जो सबके दिल को भाती है तो वो है वड़ा पाव। भाई जरा सोचे इसकी जो फैन फॉलोइंग है ना, ये जेन्युइनली किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। एक नरम सा पाव, बीच में गर्मा गर्म मसालेदार आलू का वड़ा, साथ में हरी चटनी, मीठी चटनी और वो सूखी लाल लहसुन की चटनी, हाय इसके बाद इंसान को चाहिए तो और क्या ही चाहिए। बिल्कुल मुंबई की जान यानी कि वड़ा पाव। तो भैया सड़क के किनारे गर्मा गर्म पाव के साथ एक तली हुई हरी मिर्ची मिल जाए ना, और साथ में अगर बारिश हो रही हो, इसे कहते हैं फुल ऑन मैजिकल लाइफ। चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, अगर कतर में मुझे वड़ा पाव सबसे अच्छा खाना है तो मैं उसके लिए कहां जाऊं? मुझे अभी के अभी सजेशन दीजिए, बिकॉज टुडे आई एम रियली क्रेविंग सम वड़ा पाव। करण औजला की आवाज में मीनवाइल आपको अगला गाना सुना दूं, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: रवि शेरगिल की खूबसूरत सी आवाज और लवली पावर पैक ट्रैक मस्त वाला गाना अगर हम किसी को कहते हैं तो बस इसे ही कहते हैं फ्रॉम द फिल्म जब तक है जान फीचरिंग द स्टनिंग द वेरी हैंडसम द बादशाह द वन एंड ओनली शाहरुख खान. क्या बात है यार.
1: मिर्ची अंशु
0: यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों का नाम एस से शुरू होता है ना कुछ ना कुछ स्पेशल मैजिक जो है इनके अंदर जरूर होता है. अब आप शाहरुख खान को ही देख लें. मेरा नाम अंशु है लेकिन हाँ वो एस फैक्टर जो है ना मेरे अंदर भी मौजूद है जो सिंग. लेकिन हाँ कोई बंदी और है जो ना ही सिर्फ आपके दिमाग के खानों को बहुत अच्छी तरह से खोलना जानती है आपकी मन की बात को दिल से पढ़ना जानती है बल्कि आपके सारे राज दुनिया के सामने भी लाना जानती है. नहीं आप चाहो या ना चाहो लेकिन ऐसी बात जो है ना कभी हो जाती है. वेल वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सेशंस वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सेशंस वन ऑफ द मोस्ट एंथ्रॉलिंग that you will get to witness is going to be with Suhani Shah on 25th of September at Qatar National Convention Center. Well, ek baat batau, hum na bade kamaal log hain yaar. Aksar jab ye sare videos hum social media mein dekhte hain, scroll karte hue dekhte hain, to lagta hai yaar, kabhi na kabhi iske session mein zarur jana hai, ye event to zarur attend karna hai. Jab wo theek hamari aankhon ke samne cheeze hone lagti hai na, unnecessarily delay karna, phir na jaane kyun hume pasand aata hai. Bhai, itna kehna chahungi, abhi is waqt chal raha hai early bird discount, early bird offer, jo ki limited time के लिए और इसके बाद कोई ऑफर वापस नहीं आएगा. इसलिए फटाफट से जाएं, क्यू टिकट्स की बात करूं, स्नूनू सिटी की बात करूं, जाकर अपनी टिकट्स जो है 101% सिक्योर कर लें. 160 रियाल्स में आपको दो टिकट भी मिल रही है. इनफैक्ट अगर आप स्नूनू सिटी से बुक करते हैं दैट केस आपको 30 रियाल्स का कैशबैक भी मिल रहा है. सुहानी शाह, जस्ट इन केस ये नाम नहीं सुना है, अभी के अभी इंस्टाग्राम में जाओ, वीडियो देखो, समझ में आएगा दुनिया के दिग्गजों को हैरान करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में हैरानगी लाने के लिए बंदी किस तरह से बेकरार तैयार है. बुक योर टिकट्स नाउ. विशाल मिश्रा की आवाज एंड अगला प्यारा सा गाना एंजॉय बंदी का नाम अंशु.

0: अभी मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब क्या करूँ भाई मैं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: सुबोध शर्मा की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। भाई वैसे ये जो सवाल है ना इश्क करने के बाद नहीं पहले पूछा जाता है, आप क्या बताएं कैसे बताएं।
1: मिर्ची अंशु।
0: लेकिन देखो एक बात तो मैंने इस वक्त ठान लिया कि अभी ना मुझे किसी सवाल जवाब के पचड़े में पड़ना ही नहीं है। जब मेरी जिंदगी में दूसरा बहुत बड़ा एम्बिशन हो, मिशन हो, तो पता है कोई इंसान ये सब सोचे तो क्या ही सोचे। वेल, अच्छे वाले दिन जो है हमारी जिंदगी में आ चुके हैं। फेस्टिविटीज का मौका एक बार फिर से लाइफ में शुरू हो रहा है। खुशियां जो है घर के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करने का मौका भी है, दस्तूर भी। लेकिन कैसे भाई साहब? अच्छे एक्सचेंज रेट्स के जरिए। जरा देखें आज का पैसा क्या बोलता है। अजी दीवानो, मेरी बात मानो, पैसे फटाफट ट्रांसफर कर ही दो। अंशु के अकाउंट में भी एंड खुद के अकाउंट में भी अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे, वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.24। क्या बात है जी। इसी तरह एक्सचेंज रेट आप तरक्की करते रहे, बढ़ोतरी हमारी जिंदगी में भी लाते रहे। पाकिस्तानी रुपीज 76.19 एंड इसके साथ ही लंदन रुपीज मचाते हुए डंक एट 90.57। क्या बात है यार। एंड अगर बांग्लादेशी टाका की बात की जाए तो 33.5949 एंड साथ ही नेपाली रुपीज 41.89। तो बस घर भेजो पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: अब जिसके निकल गए हैं वो लकी हैं सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
1: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
0: 7,500 रुपए का।
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
0: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
0: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
0: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मेरी मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
0: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
0: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप हमें तो रख लो, ये बीच में रख लो हमें तो यार।
0: अरे यार
1: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
0: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर, शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोरस्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wird bala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते।

0: दर्शन रावल की खूबसूरत सी आवाज और ये अगला प्यारा सा गाना जो मेरे रास्ते आपके दिल तक पहुंचा, रोचक कोहली ने क्या गजब तड़का लगाया है, जोनिता गांधी है जस्ट लव है। चलिए जी, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक बड़े पतन काम के बाद फिर से आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो, एक गजब का मामला जो है ना देश दुनिया में काफी प्रचलित हुआ है, बात है सीधा इंडिया से आती, क्योंकि ये कहानी जो है हमारे घर की है।
2: अरे ये तो अपने घर की बात है।
3: घर की बात, ट्रेंडिंग खबर फ्रॉम इंडिया।
0: नाउ दिस इज समथिंग रियली एक्साइटिंग एंड दिस इज समथिंग रियली फनी एट द सेम टाइम, लेकिन हाय कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग जो है ये जरूर है। देखिये, ये बात तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पत्नियों का कुछ हो या ना हो, लेकिन एक जन्म सिद्ध ने शादी सिद्ध अधिकार होता है कि भैया कुछ करे ना करे, लेकिन पति से छुपा कर अपने कोई तो अड्डे में पैसे 101% रखें। अब कोई पत्नियां जो है चाय पत्ती के डब्बे में रखती हैं, तो कोई जो है अपनी तिजोरी के अंदर कहीं तो छुपो के रखती हैं, कोई कपड़ों के बीच रखती हैं, कई तो हैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी रखती हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब मामला कुछ इस तरह से हुआ कि इंडिया में केरल स्टेट में एक बीवी जो है अपने पति से छुपाकर तकरीबन 12 लाख रुपए इसने जमा किए, एंड काफ़ी समय से ये करते आ रही हैं, 3-4 साल पुरानी ये कहानी है। देखते देखते 12 लाख इन मनी मन इतना खुश हो रही थी कि मेरे पास तो इतना बड़ा खजाना है, लेकिन हुआ कुछ इस तरह, किसी और का मन जो है इस खजाने पर ज़रूर ललचाया, एंड इस तिजोरी में अगर किसी ने हड़कंप मचाया तो वो है हमारे चूहे राजा। एब्सोल्युटली कहानी कुछ इस तरह से हुई कि लगी थी इन्हें जोर की भूख और भैया इन्हीं के शौक जो हैं बड़े ऊंचे हैं, हम सबसे काफी महंगे हैं। भाई साहब, चूहे ने कुछ और कुतरा ना कुतरा, लेकिन हाँ 12 लाख के नोटों को 2-3 हफ्ते के अंदर जरूर कुतर कुतर के सत्यानाश कर दिया। द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वेल, इस पूरी की पूरी कहानी सी एक बात हमने जरूर सीखी है, पति से पैसे छुपाएं तो ऐसी जगह छुपाएं जहां कोई और आके हड़कंप या भूचाल जो है ना मचा पाए। मैं तो कहती हूँ चाय पत्ती का डब्बा भी इन दिनों ना किसी के अटैक से बचानी, जरा संभाल के रखिएगा। उसे एक बात बताएं, क्या आपकी वाइफ ने या आपने घर पे सब एक कोहराम मचाया हुआ कुछ कभी क्या है कि चुपचाप थोड़े से पैसे हटा दिए, छुपा के रख लिए, बचा के रख लिए? अरे हमारा अधिकार है, स्टिल आस्किंग, बताना जरूर। 5000-1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम। मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल नेहा कक्कड़ की आवाज, गुरु रंधावा का साथ, एनी अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: जलवे से मिलके बताने की बात करें तो ये काम तो ये जरूर करेंगी, बहुत कुछ बताएंगी और बहुत कुछ पता भी लगवाएंगी।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो मैं तो आपको हाला बोल ही रही हूँ, लेकिन आप जो है इनको हेलो बोलने की तैयारी कर लें। एक ऐसी शख्सियत जो आपको आपसे बेहतर जान पाए, जो आपकी खूबियां आपको बेहतर बता पाए, आप तक पहुंचा पाए। एंड जितने राज आपने देश दुनिया से छुपा के रखे हैं ना, उसे किसी और के सामने ना सही लेकिन आपके घर वालों के सामने जरूर लेकर आए। ये सारा का सारा काम बहुत अच्छी तरह से कोई करना चाहती हैं तो वो हैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह। एंड अब तक ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि 25th ऑफ सितंबर को सुहानी शाह कतर में पहली बार परफॉर्म करने आने वाली हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। जरा सोचें, आज इसने मास्टरमाइंड के दिमाग को पूरी तरह से खोल के पढ़ लिया। MS धोनी की अगर मैं बात करूं, सलमान खान की मैं बात करूं, आर माधवन की बात करूं, या देश विदेश के बड़े बड़े कलाकारों की मैं बात करूं, सितारों की बात करूं, नेताओं की बात करूं, भैया कोई तो हुनर है, कोई तो मास्टरी है जिस इस बंदी ने पूरी तरह से हासिल की है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एंटरटेनमेंट के अलावा आखिरकार ये स्किल को किस तरह से मास्टर किया जाता है, इस आर्ट की एक झलक देखने, लाइव देखने का अगर मौका मिले तब हम ना गए तो फिर क्या ही किया। तो सुहानी शाह हमको सब कुछ दिखाने आ रही है। आपको एक ही काम करना है, फटाफट से क्यू टिकट्स स्नूनू सिटी के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी टिकट्स को है सिक्योर करना है। अभी चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, अर्ली बर्ड ऑफर, इससे पहले की ऑफर हाथ से निकल जाए जाए काम को पूरी तरह से बना गया है, उसके बाद आप और हम मिलकर विटनेस करेंगे लाइव मैजिक सुहानी शाह का इन दोहा। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। अलग

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: जसलीन रॉयल की पावर पैक आवाज हर्षदीप कौर का साथ है भाई साहब। इस गाने के बगैर हमारे घर की हर एक शादी जो है ना बार बार देखो फिल्म के बाद बार बार सुनो मूड में हमें ले ही आती 100% है।
1: मिर्ची अंशु
0: मैं सच कह रही हूँ, सबसे खूबसूरत बात अगर कुछ है ना जिंदगी में तो ये कि आपको पता चले कि जो भी वक्त आपका सुबह से गुजरा है उसे सिर्फ आपने बिताया नहीं बल्कि वो वक्त जो है आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल हुआ हो। मतलब जब भी दिन आपको फील हो कि हाँ यार आज का दिन जो है हमने दिल खोल कर जिया, सच कह रही हूँ ज़िंदगी हर दिन जो है ना आपको मिल ही जाती है, बन ही जाती है। वैसे भी ना अक्सर मेरे पापा मुझसे एक बात कहा करते थे कि लाइफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बेटा मरते तो हम सिर्फ एक बार हैं लेकिन ज़िंदा होने का मौका ये जो ज़िंदगी है ना हमें हर दिन देती है। तो हर दिन जब हमें नई लाइफ मिलती है उसे हम किस तरह से जीते हैं अगर ये किसी के हाथ में सबसे ज़्यादा है तो वो है आपके हाथ में। वाला इतना ही कहना चाहूँगी, लाइफ का हर एक डे बहुत ही ज़्यादा प्रेशस है। कई बार हमें ये फील होता है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है ऐसा है वैसा है, लेकिन भाई जो तुम्हारे पास सब कुछ है ना, न जाने दुनिया की कितने लोग उसे पाने के लिए कितनी मिन्नतें कर रहे हैं कितनी कोशिशें कर रहे हैं। तो बस ऊपर वाले ने जो भी दिया है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से शामिल करते हुए हर दिन को मस्ती में जिए यार। बाकी तो जो होना है वो होगा, जो अच्छा हम कर सकते हैं वो क्यों ना हम हर दिन ज़रूर कोशिश करें। चलिए जी, जाते जाते पॉजिटिविटी का थोड़ा सा डोज जो है मैं आपको दे दूं। बाकी मैं तो अपनी लाइफ में और अभी प्लेट में खाने का डोज लाने वाली हूँ। आज वैसे मैंने बनाया हुआ है मस्त वाला सांभर इडली एंड चटनी का कॉम्बिनेशन। आप क्या खाने वाले? 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल जाने से पहले अरिजीत सिंह की आवाज़ में अगला प्यारा सा गाना आपके रास्ते छोड़ते हुए जाती हूँ। हबीबी मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मसलामा।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है?
0: यार, मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की याद का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के. और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी. आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया. And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं. एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था. तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे. तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था. हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से. लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना. अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास. एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक. अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा. पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे. मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है. लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा. क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है. तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का. और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ. आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana.
1: La bala.
0: Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Con?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई माना कर, मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे.
3: हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: Okay.
3: I love you.
2: I love you too.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ. Only on मिर्ची. It's hot.
0: It's hot.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी. इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सब के सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं. ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार. तभी तो वेलकम की इतनी कदर है. लेकिन बताइए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी. एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी. इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि ये ड्रेस का प्राइस वाज सो हाई. हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी. मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे. एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है. मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वाज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए. आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम. एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम. किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम. लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था. एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है. एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम. और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म. फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए. फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम. आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार. दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए. प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए. जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़ी इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो कैंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Darling, every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever and ever.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: दिल्ली बेली जलसा ब्राउन जैसे कंटेंट के क्रिएटर मिस्टर अभिनय दियो
4: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
5: वेट
4: टेल
5: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही है आई टेल यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माई फादर माई गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट आई सेड बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई And he was a filmmaker, an actor himself.
3: Abhinay Deo, the director, is talking about his father, Ramesh Deo, one of the finest actors the Hindi and the Marathi cinema has seen. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम सबको पता था कि
2: जस्सी जस्सी कोई नहीं
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And the show जस्सी जस्सी कोई नहीं was a hit. क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक. और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक के दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार. एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था. और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि एंड द शो जस्सी जस्सी कोई नहीं वॉज अ हिट. क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक. और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक के दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार. एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में मैंने तुझसे
2: वाली बातें कर रहा क्या?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ।

0: नहीं रॉन्ग नंबर ले, तुझसे तुझसे बात नहीं, राइट नंबर ले, राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
0: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे, चल ठीक है निकल तू
2: यार। मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि यू नो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना,
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये है कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से है। Here we go।

बस जी, अब मुझे डीएम करना है और इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कोयला मूवी का एक गाना था, बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है। हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है। और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाए।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke, there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai. And inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो DM कर दीजिएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
2: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
3: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल टू आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट दे नो
2: हु दे आर,
3: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी, या आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड।
1: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, बिकॉज़ आई विल आल्सो। यह यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यूकी सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Gabana. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके। सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें रख लो, ये मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
2: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये
3: अरे यार
2: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
2: बताइए,
3: आप मुझे आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के शटर वाले कैबिनेट.
2: यादों को चिट्ठी.
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के. हमारे घर में नहीं थे लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ. वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है. मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था. लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी. तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था. बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार. आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं बेबाक और बिंदास. तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Countdown shows में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो at that time this was just a melody for us. किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा.
0: मिर्ची 90s कैसेट.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And 90s के दौर का बाली ब्रह्म भट्ट का एल्बम का ये गाना.
2: तेरे भी जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा.
1: What a melodious track यार. लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था. लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा. And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते. मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदायी हो जाता है यार. खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ. बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता. चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना. जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi, it's hot.
1: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
2: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है। प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
1: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
3: Driven by Suzuki Qatar. Back to school, back to office. Go with Suzuki. Choose from a range of safe, fuel-efficient and reliable cars. Time-tested in Qatar for over 50 years.
4: Visit Suzuki Qatar Showroom by Tehsil Motors, Airport Road, Doha.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
1: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मैं कहता हूं कि मेरी चंद लाइनों पर ध्यान दीजिएगा कि अर्ज किया है ना ही बुलाने पर आई है ना ही कहने पर जाएगी। ये गर्मी है साहब, जब मन करेगा तभी यहाँ से कल्टी खाएगी। और यदि आपको इस घटिया शायरी सुनने के बाद पत्थर मारने का मन किया तो मेरे स्टूडियो में शीशे लगे, आपके पत्थर आएंगे नहीं। शाम के 4:03 से ज्यादा
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: लेकिन आपको पता है कि सूरज चाचू इतना क्यों चमकते हैं? क्योंकि सब देखो चंदा आ गया, चंदा मामा, चंदा ये चांद है तू चांद। अरे कभी कोई सूरज से भी तो तुलना करो। अब जब सब कोई चांद से ही प्यार करेगा तो सूरज तो जलेगा ना मेरे दोस्त, इसलिए सूरज चाचू गुस्सा होते। तो अगली बार जब यही हो तो कह देना मैं तुम्हारे लिए सूरज तोड़ लाऊं, क्या पता सूरज चाचू को अच्छा लग जाए और उनकी चमकान थोड़ी कम हो जाए। फिलहाल थोड़े और दिन इसी गजब वाली गर्मी को झेलना, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। एंड मस्ट फॉलो गौरव, फिलहाल अपनी बातों से आपका दिल जीतने एंड ढेर सारे गानों से एंटरटेनमेंट लाने आ गया है। एंड हमारा आपका रिश्ता 5-5.5 सालों का होने आ रहा है, ऐसे में अगला गाना मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं, मेरे सारे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों सबको, साज भट्ट सुबोध शर्मा मिलके जरा गाओ। हमारा आपका रिश्ता भी पुराना है और ये कंटिन्यू कर रहा है, और इसीलिए ये गाना तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज़।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Rabbana.
1: Murga, murga. La virtual murga.
2: Milchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
3: या ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज

0: बस करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार। मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास लुआसे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना। और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं। लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
0: नहीं मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
0: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
0: बिल्कुल पर
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
0: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
0: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
0: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी होगी आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
0: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
0: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। Supply.
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह

तब बैग ना स्टाइल नहीं सर्वाइवल स्किल होता था। 89.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे मस्त मौला गौरव। एंड याद कीजिए हमारे और आपके स्कूल डेज, तब ना बैग जो है वो लग्जरी नहीं होती थी, मतलब कि हर बार कुछ नया ले रहे हैं। तब हमारे होते थे सॉलिड एल्युमिनियम वाले मेटल बॉक्स, फिर 2-3 क्लास तक वो लेकर गए, उसके बाद फिर चीजें बदली और एल्युमिनियम मेटल बॉक्स जो है वो बदल गया कैनवस बैग में। फिर क्या है 2-2, 3-3, 4-4 क्लास तक चले और जब फट जाए तो उसमें नीचे टाके लगा के हमने फिर चलाए। एंड फिर उसके बाद गेम चेंजर आज के दौर के बच्चों के लिए ट्रॉली ड्रैगिंग बैग तक आ गया भैया। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है किताबों का बोझ। और इसलिए बैक टू स्कूल सीजन जैसे ही आया है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने हम सबको एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की है। स्पेशली एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों के लिए सुटेबल बैकपैक लेने हैं, क्योंकि बच्चों में बैक पेन बढ़ता है अगर हम अनसुटेबल बैकपैक लेते हैं, ऐसा बैग दिला देते हैं जो काफ़ी छोटा हो। ऐसे में बच्चों के पॉस्चर इश्यूज हो जाते हैं, उनका शोल्डर जो है स्ट्रेन करता है, इसका रिस्क ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बैग बाय करते टाइम बच्चों की हेल्थ एंड सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें। एंड देयर इज़ अ 10-15% रूल, यानी कि बच्चे के भरे हुए बैग का वेट उसके वजन से 10-15% होना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा 40 किलो का है तो अराउंड 4.5-5 किलो तक का बैग इज एकदम एप्ट। हाँ जी, मतलब सब कुछ भरने के बाद। और स्पेशली हमें ना डबल पैडेड वाइड शोल्डर स्ट्रैप्स लेने चाहिए, इससे बच्चों को बैलेंस बराबर फील होता है, स्पाइन की प्रोटेक्शन होती है। और एक और बड़ी टिप, मल्टी कंपार्टमेंट वाला बैग लीजिएगा। वो मल्टी कंपार्टमेंट में क्या होता है ना, हैवी बुक स्पाइन के पास रख सकते हैं जिससे पीठ एकदम ठीक ठाक रहे। हाँ जी, ये सब कुछ हमें बताया जा रहा है ताकि हम एक सही और बेस्ट बैग अपने बच्चे के लिए लें। तो स्टाइल चेकआउट जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने बच्चे का बैक सपोर्ट ध्यान में रखिए ताकि उसके बॉडी का पोस्चर बिल्कुल बदना बदले। वेल, एक दौर था जब 4-4, 5-5 क्लासेस में एक ही बैग से काम चला लेते थे, और फिर आई क्लास 11th और 12th जब एक ही कॉपी बस एक बैग में ही निपटा देते थे पूरी पूरी क्लास। यार, स्कूल डेज वर दी बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ, और स्पेशली जब छुट्टियों के बाद स्कूल जाने का टाइम आता था ना, एक अलग एनर्जी होती थी बच्चों। वो एनर्जी चाहिए तो मिर्ची की ये बैक टू स्कूल पार्टी को ज्वाइन कर लो। एंड उसके लिए करना क्या है, आप अपने बच्चों का नाम और क्लास यानी कि उनकी एज जरूर भेजिए 5000-1896 पर। याद रखिए हमारी एज कैटेगरी 6-12 है। अगर आपका बच्चा इसमें आता है तो प्लीज डू सेंड हिज और हर नेम एंड हम उन्हें रजिस्ट्रेशन लिंक भेज देंगे। 89.6 मिर्ची 1, बच्चों स्कूल जाने को हो जाओ तैयार, वही असली फन। इट्स हॉट।

थोड़ी देर तक मोबाइल पे डेटा स्क्रॉल करने की, से रील स्क्रॉल करने की और डेटा को खपाने की आदत पड़ गई है, तो हम बताते हैं रीजन क्या है। रीजन बहुत ही सिंपल है दोस्त, हमारे कतर का हाई स्पीड इंटरनेट जो अब दुनिया मान रही है। यस, आप देखते होंगे कि कतर में हमारी लाइव स्ट्रीमिंग इतनी जबरदस्त है कि हम रील पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं और एक बार भी वो गोल गोल चक्कर जो पुराने दिनों में आता था वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी कि हम हाइपर कनेक्टेड हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कतर ने ग्लोबल डिजिटल गेम में एकदम बॉस वाला मूव ला दिया है। यस, हम आपको बताना चाहते हैं कि ITU ICT डेवलपमेंट इंडेक्स, यस अब ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, और ICT डेवलपमेंट इंडेक्स में कतर ने 98.4 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में 98.4%। ये बता रहा है कि कतर में इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, इंटरनेट एक्सेस की बात करें, तो हम ऑलमोस्ट 98.4% परफेक्ट है। एंड मोबाइल फोन ओनरशिप, मतलब 4G 5G या आप जो भी रील वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर यूं कह लें कि जो पेनिट्रेशन है इंटरनेट का वो एकदम हाई है। एंड ग्लोबल एवरेज 79 है और हम कतर में 98.4 है। भैया, अब हम पूरी दुनिया बता सकते हैं कि हम दुनिया के उस देश में रहते हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी रिपोर्ट में जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें 90.4% है। वेल, इतने ही नहीं, ये स्कोर अचानक नहीं आया, पिछले 3 सालों से उस पर लगातार मेहनत हो रही थी। पहले 97.3 था, 2024 में 97.8 हुआ, 25 में ये एक बार फिर से 97 के एकदम करीब ही था, 97.8 के, लेकिन इस बार 98.4 के साथ हम जीरो बफरिंग वाइब्स के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि बफरिंग नाम की चीज हमारे कतर में एग्जिस्ट नहीं करती, हम ये कह सकते हैं। अगर अगली बार आप सीमलेस इंटरनेट देख रहे हैं तो ये समझ जाइए 98.4% जो कतर का नंबर आया ना, ये इसी वजह से है कि आप लगातार रील पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट जरूर दीजिए। वहां पे भी तो आपको 100 out of 100 स्कोर करना है, वरना भाई ये समझ लो नंबर लग जाएगा, फिर कहोगे यार ये तो गड़बड़ हो गया। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: तार तार समझ रहा है, ये है लकी अली की खूबसूरत वॉइस। सुनो, सुनाया किसने? मस्त मौला गौरव। लेकिन सूरज चाचू, तुम भी तो हमारी दुख भरी कहानी सुनो, और कितने दिन झुलसाओगे तुम्हारे आगोश में, हम सब टैन पे टैन हुए जा रहे हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। अब देखिए, मतलब वीकेंड पे अगर थोड़ी देर बाहर घूम भी ले रहे हो और गलती से सूरज चाचू की चमक जो है वो तुम्हारे चेहरे पे पड़ रही है, तो टैनिंग लंबी रह रही है। वेल, दिन का मैक्सिमम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, दिन का मिनिमम 31 आया, ये 20s में आने वाला है, मुझे पूरा यकीन है अगले कुछ दिन में मिनिमम अराउंड 29-30 तक पहुंच जाए, ऐसा ही हम उम्मीद करेंगे। इन सब के बीच हवाओं की बात की जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास ह्यूमिडिटी इस वक्त पहुंची हुई है हमारे आपके बीच 35% के साथ। एंड घबराना नहीं है दोस्तों, थोड़े दिन और पानी पी के आपको पता है सूरज चाचू को कोसना है, लेकिन ये इतनी डिग्री किस लिए लेते हैं सूरज चाचू? कहीं कलेक्टर बनना है तुमको? कहा इतना डिग्री की चमकान दिखा रहे हो यार, कम कर लो अपनी ब्राइटनेस। 89.6 मिर्ची वन इट्स ऑल। जैस्मिन वालिया जैक नाइट ने मिलकर गा दिया है बम डिगी डिगी बम बम, सोनी की टीटी की सीटी से गाना।

0: गुलाबी साड़ी आ गया इस घंटे का कॉन्टेस्ट। देखिए एक ट्रेडिशन एक रिवायत सी बन जाती है और यहाँ पर मैं आपके साथ शाम 5 बजे के बाद खेलता हूँ पहचान कौन। फिलहाल तो 5:05 का टाइम।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
0: एंड इट्स टाइम फॉर पहचान कौन।
2: पहचान कौन
0: एक आवाज जो आपके कानों में जाएगी और आपको बताना है कि ये कौन है।
3: How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूँ मैं।
4: सर ये
3: Come with me to the principal.
4: सर आपकी थूक मुंह पे।
3: Follow me.
0: कौन है ये भाई एक्टर जिसकी आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं? एक बार फिर ध्यान से सुनो।
3: How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूँ मैं।
4: सर ये
3: Come with me to the principal.
4: सर आपकी थूक मुंह पे।
3: Follow me.
0: भाई ये वो कह सकते हैं कलाकार हैं जिन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक जब जब आए लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए और एक फिल्म में तो मर के भी एकदम कमाल की एक्टिंग करी थी। 5001896 पर आपको बताना है ये किस कलाकार की आवाज।
3: How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूँ मैं।
4: सर ये
3: कम विद मी टू द प्रिंसिपल।
4: सर आपकी थूक मुंह पे।
3: फॉलो मी।
0: 5001896 पर मस्मोला गौरव इंतजार कर रहा है क्योंकि बैक टू स्कूल का टाइम है। ऐसे में मैंने ये टीचर साहब को आपके सामने परोसा है, उनकी आवाज सुनकर आपको बताना है ये कौन से कलाकार हैं जिनकी आवाज मैंने यहाँ सुनाई है। 5001896 पर प्लीज डू वॉइस नोट, अगर भेज सकते हैं तो अपनी आवाज में भेजिए, वरना टाइप करके भेज रहे कोई बुराई नहीं है। सर मैं आपका नाम पढ़ दूंगा।
3: हमारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूँ मैं।
4: सर ये
3: कम विद मी टू द प्रिंसिपल।
4: सर आपकी थूक मुंह पे।
3: फॉलो मी।
0: 5001896 पर मस्मोला गौरव इंतजार कर रहा है क्योंकि बैक टू स्कूल का टाइम है। ऐसे में मैंने ये टीचर साहब को आपके सामने परोसा है, उनकी आवाज सुनकर आपको बताना है ये कौन से कलाकार हैं जिनकी आवाज मैंने यहाँ सुनाई है। 5001896 पर प्लीज डू वॉइस नोट, अगर

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
3: ओ मेरी बात सुन,
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो
3: जब डर गया था
2: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
2: आदमी फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तुझसे
2: वाली बातें कर रहा
3: है क्या? मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रही, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल जा।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: ड्रिवन बाय Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman Heavy Duty Trucks and Boom Trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group.
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

0: ए भैया पवन सिंह, स्टार पावर ऑफ भोजपुरी सिनेमा,
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन फिलहाल आपके साथ मस्त मौला गौरव जुड़ गया है। रूपाली जगा, रुपेश भाई भी चले गए हैं गाना गा के, और हम आ गए खेल रहे हैं आपके साथ। वाह भाई वाह, पहचान कौन में आज की आवाज पहचाननी है। आवाज प्ले करें।
2: How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूँ मैं।
3: सर ये
2: Come with me to the principal.
3: सर आपकी थूक फूक है।
2: Follow me.
0: यही पूछा था कि आवाज है किसकी, एंड ऐसा नहीं है भाई, आवाज जिसकी हो पहचान लेते हैं उनके फैंस।
4: गुड इवनिंग, दिस इज अभिलाष, द वॉइस नोटिस ऑफ सतीश शाह।
5: गुड इवनिंग गौरव,
0: हाउ आर यू? गुड इवनिंग,
5: कैसे हैं? ठीक है, यूसुफ विद यू। ये है, ये आवाज है सतीश शाह की, फिल्म है मैं हूं ना, शाहरुख खान और सतीश शाह है।
0: ओके,
5: थैंक यू, बाय बाय।
6: हाय गौरव, ये सतीश शाह की आवाज है, और जाने भी दो यारों में ये मर करके अच्छी एक्टिंग करके गए थे।
0: जाने भी दो यारों, कैसे भूल सकते हैं, वाकई में इन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की थी। और कोई है?
7: हेलो, माय नेम इज मनीष कुमार एंड द आंसर इज सतीश शाह, मूवी मैं हूं ना।
0: हाँ, सतीश शाह मूवी मैं हूं ना, लेकिन कुछ लोगों ने गलत भी बोला है, उनके भी आंसर बता देते हैं। यस, मैंने निधि से बोला था कि निधि आवाज रिकॉर्ड करके भेज दो, क्योंकि निधि का आंसर था राकेश बेदी, एंड इनकी आवाज सिमिलर है, लेकिन दिस वाज नॉट राकेश बेदी, दिस इज सतीश शाह। इसके अलावा आपका भी नाम लेना चाहूंगा, रोकनुर रहमान साहब, बिल्कुल सही, सतीश शाह से शाहरुख खान, एकदम सही जवाब है। एंड ऑल्सो अष्टमी रघुनाथ, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। इसके अलावा अजीत भाई, आपका आंसर सही है, यस दिस इज सतीश शाह। एक और किसी ने लिखा है, दिस इज गुलशन ग्रोवर, नहीं, पूजा जी गलती हुई है, गुलशन ग्रोवर ये बिल्कुल नहीं है, ये कौन है? हैं, मनीष भाई ने भी गुलशन ग्रोवर, अरे यार ये आवाज गुलशन ग्रोवर तो नहीं है, सतीश शाह इज द राइट आंसर। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, शानदार कलाकार थे, अपनी अदाकारी से सबको लोहा मनवा दिया था। एंड जाने भी दो यारो इज ऑल टाइम फेवरेट ऑफ माइन, 89.6 मिर्ची वाली था। लेकिन ईव टीजिंग से मुझे सख्त नफरत है, हालांकि ये गाना आंख मारे है, लेकिन असलियत में कुछ नहीं हो रहा है। नेहा कक्कड़, मिक्का सिंह, और मिलकर कुमार सानू जी के साथ पुराने को नया बनाए।

दैट इज व्हाई के साहब इतने अलग थे यार। कल उनका बर्थडे था, हाँ जी, एक लेजेंडरी बर्थडे सिंगर का। मतलब मैं इतना ही कहूंगा कि यार के साहब के जितने भी गाने सुन लो, मुझे हर बार बस एक ही चीज आती है, गॉन टू सून टाइप वाली फीलिंग यार। फिलहाल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गानों की वजह से हम इतने सारे यू नो अपने दिल को सुकून दे पाते हैं। इन सब के बीच मस्त मौला गौरव आपके साथ। देवी और सज्जनों, सुकून के पल आ गए, अब हमें सुहानी शाह को सुकून से देखना है, क्योंकि द मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, पावर्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय आईपे। एंड आई जस्ट टेल यू वन थिंग, सुहानी के जितने वीडियोस आप देख रहे हो, ये तो एल्गोरिथम है जहां पर कतर में हर कोई इस वक्त सुहानी की चर्चा कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, हर वीडियो देखने के बाद आपको भी यही लग रहा है यार, नहीं मेरे साथ करो तब माने, मेरे साथ करो तब माने। पर सोचिए वो क्या माहौल होने वाला है जब इतने लोगों के बीच में सुहानी किसी को भी रैंडमली बोल सकती है, आपका बॉयफ्रेंड का नाम ये है, आपकी एक्स का नाम ये है, आपने एग्जाम में ये कांड किया था, तो मतलब आप डर तो जाएंगे ही ना। मैं बहुत घबराया हुआ भाई, मैं सोच रहा मैं सामने ही नहीं आऊंगा, चुप चुप के बस देख लूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने अपनी टिकट्स बुक नहीं किए हैं तो गो एंड बुक योर टिकट्स एस सिटी स्नूनू पर। आपको इस वक्त 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिल रहा है, रिमेंबर 30 कतरी रियाल का कैशबैक, एंड दैट टू विद अर्ली बर्ड ऑफर, जहां पर अगस्त के इस महीने आप टिकट कराते हो तो आपको बहुत अल्टीमेट प्राइस पे मिल रहा है। अगर हम सिल्वर कैटेगरी बात करें, 160 में दो टिकट्स, लेकिन अगर 30 कतरी रियाल कैशबैक तो 130 में दो टिकट। तो 65 रियाल में आप ये शो देख रहे हो जो दुनिया के कई देशों में लोग और महंगे पैसे देके देख रहे हैं। थैंक यू टू कतर जो इस तरह के एक्सपीरियंस हमें कराता रहता है। और अब बारी आई थी मेंटली सुहानी शाह को लाइव कतर में देखने की। दोस्तों 89.6 मिर्ची वन, जल्दी टिकट्स बुक कर लो, सारे मेजर प्लेटफॉर्म पर है। फिलहाल एस सिटी पर आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिल रहा है। मिर्ची शॉट महरम गाना लेकर सचे टंडन आ गए हैं, आइए जर्सी पहन के गाना सुने, फिल्म जर्सी का ये गाना।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय देओ
2: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
3: वेट
2: टेल
3: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही है कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्ममेकर एन एक्टर हिमसेल्फ
1: अभिनय देओ द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश देओ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स लेट मत करो ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे TNC अप्लाई
5: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

What a voice, KK साहब, gone too soon यार, आपको और होना चाहिए था अभी यार। कुछ आवाजें हैं जो आपके कानों में जाती हैं, एक सुकून का यू नो पल देती हैं, और KK साहब की आवाज वैसी है। फिलहाल तो एक और चीज जो सुकून पहुंचाती है वो हमारे पैसों की ताकत, रियाल से जब रुपए में बदलो उसकी। वक्त एक कतरे रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 26 रुपए 26 पैसे, यानी कि जितने रुपये मिलेंगे उतने ही पैसे मिल जाएंगे, 26.26 INR। वहीं अगर हम बात करें तो श्रीलंकन रुपीस अगेंस्ट 1 कतरे रियाल 90.39। अब जनाब पाकिस्तान रुपीस की तरफ आते हैं, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.19 पाकिस्तानी रुपीज, और तपाईको नेपाली रुपीज का रेट छ दाजु 1 कतरे रियाल के बदले 41.92 का रेट छ बहिनी, हाँ जी 41.92 का रेट छ दाई, घर हाजू राइट टाइम छ। और इसके बाद बंधु बांग्लादेशी टका बात करेगा दादा, एकटा कतरे रियाल कतरे बेशी तो 33.67 आइटा रेट, ठीक है बाड़ी ठीक है, पैसा भेजी दियो मस्त मोलो गौरव के साथ, एंटरटेनमेंट के लिए मिर्ची है, यहां पर आपका रुपया पैसा सब सेफ रहता है क्योंकि दिल को सुकून मिलता रहता है ना गानों से। अगला गाना जावेद अली की आवाज में, पुष्पा करें श्रीवल्ली, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है?
0: यार, मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

0: हाँ जी, लाल लाल कलर की बांगड़ी, 6:11। यस, और मस्त मौला गौरव जब आपके साथ है तो आगे बढ़ते हैं।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: अब होगा सवाल जवाब का सिलसिला, और सवाल जवाब का सिलसिला ये कि हमारे मन में आ गया एक सवाल और हमने सोचा क्यों ना आपसे पूछा जाए। यार, रितेश देशमुख जिन्होंने मराठी फिल्मों का स्टैचर इतना बड़ा कर दिया कि फिर लोग कहने लगे अब तो फिल्में मराठी में बनेंगी और उनका हिंदी वर्जन आएगा, लेकिन क्या आपको ऐसी एक मराठी फिल्म याद है जिसका 100 करोड़ पार होकर बिजनेस इतना बड़ा हुआ कि उसका हिंदी वर्जन बनाया गया और एक बड़े घराने का लड़का और एक बड़े घराने की फिल्मी घराने की लड़की का डेब्यू भी हुआ। फिल्म का नाम बता सकते हैं क्या आप? अरे, मराठी वाली फिल्म का नाम पूछ रहा हूं, मुझे पता है आपको दूसरी वाली तो पता ही है। 5001896 पर आपको बताना है वो मराठी फिल्म जिसने 100 करोड़ क्लब में पहली बार शामिल होकर ऐसा तहलका मचाया था कि उसका हिंदी वर्जन बना जिसमें एक बड़े घराने के फिल्मी घराने के लड़के ने और एक फिल्मी घराने की लड़की ने डेब्यू किया। 5001896 पर मस्त मौला गौरव आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। बताइए वो कौन सी मराठी फिल्म थी जिसका रीमेक बॉलीवुड में यानी कि हिंदी इंडस्ट्री में बना एंड माहौल बना। 5001896 पर मस्त मौला गौरव इंतजार करेगा एंड आगे बढ़ेगा आपकी ओर, क्योंकि हम आपकी ओर लेकर आ रहे हैं अरिजीत सिंह, शिल्पा राव को। चलिया तेरी ओर।

0: Mirchi.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virbala, burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई माना करो, मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तो क्यों आवाजें आ रही है. मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का अभी आग लगा था इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फायदा है आप बताओ. कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से. और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा. बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया? वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे.
3: हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: श्रुति रानी की आवाज में ये गाना हमने सुनाने। वैसे श्रुति रानी ने गाया कोई सहरी बाबू कुलहरी बाबू, हम सुना तो दिए, लेकिन इन सबके बीच मस्त मौला गौरव ने एक सवाल पूछा था जिसके जवाब की बारी आ गई है, एंड ये था हमारा बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
1: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
2: ओके सर।
0: पूछा ये था कि वो फिल्म जिसने मराठी फिल्म होकर इतना तहलका मचाया कि 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई, और उसके बाद इसका हिंदी वर्जन भी बना जिसमें एक काफी बड़े फिल्मी घराने का लड़का और फिल्मी घराने की लड़की की डेब्यू मूवी के रूप में ये आई, एंड उसके मराठी वर्जन का नाम क्या था। और देखिए हमारे लिसनर्स स्मार्ट है, पकड़ लिए क्वेश्चन।
3: हाय, सो द आंसर इज सैराट मराठी मूवी थी और धड़क हिंदी वर्जन बना उसका।
4: हाय गौरव, गुड इवनिंग, शैला हियर, द मूवी नेम इज सैराट।
0: बिल्कुल सही जवाब, सैराट इज द राइट आंसर। और ये तो रिकॉर्डिंग वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने जो लिख के बताया उनको बता दूं, अनुज बिल्कुल सही जवाब है सैराट। इसके अलावा हमारे ये एक और भाई हैं, यस इनका नाम है नितिन, एकदम सही जवाब सैराट। इसके अलावा अगर बात करें तो अर्जुन ने लिखा है सैराट। इसके अलावा राहुल भाई सैराट, पंकज सैराट, अब्दुल गनी सैराट, एंड ये कौन है, ये है आतिफ भाई, इन्होंने लिखा है सैराट राज मोहम्मद सैराट। बिल्कुल सही जवाब है, सैराट इज द राइट आंसर। एंड कैसे भूल सकते हम एक शानदार पिक्चर जिसका जबरदस्त म्यूजिक था, एंड उतना ही खूबसूरत इस फिल्म पर ढेर सारे लोगों का प्यार। इतना ही कहना चाहता हूं कि धड़क फिल्म ने जितनी कामयाबी कमाई उससे ज्यादा सैराट ने कमाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए मस्त मौला गौरव अगला गाना आपको इसी फिल्म का सुनाने जा रहा है यहां मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: देखने आओ ना।
1: मस्त मौला, मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: यार गुकेश जो प्रेजेंटली वर्ल्ड चैंपियन है चेस के, वो अपने दिमाग में एक चाल सोच रहे हैं जो कि सुहानी ने उनसे कहा है सोचने को। एंड जब उस चाल के बारे में सुहानी पूछती है तो सुहानी एग्जैक्ट वही चाल बताती जो गुकेश के दिमाग में चल रही है। अब ये कौन सी चाल चली सुहानी ने कि गुकेश इतना बड़ा चेस चैंपियन भी अपनी चाल को बचा नहीं पाया। अच्छा हुआ सुहानी उनके साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में नहीं थी, नहीं तो गुकेश जीत ही नहीं पाते। वेल ऐसा कमाल करती है दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर एंड शी इज कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Sponsored by Qatar Calendar, presented by iPay, and all is set. अब तो बस इंतजार है जब सुहानी आएंगी और उस खूबसूरत शाम में हम सब मिलकर ये खूबसूरत नगमा देखने वाले। क्योंकि मैं ये मानता हूँ सिंगिंग का अपना चार्म है, डांस का अपना चार्म है, लेकिन एक मेंटलिस्ट को इस तरह से परफॉर्म करते देखना ये पहली बार कतर में होने जा रहा है। प्रेजेंटेड बाय आईपे, एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वीन, पापा जोन्स, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, इसके अलावा हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, पार्टनर्ड बाय डाइसो जापान, होम्स आर अस, रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड एंड टिकटिंग पार्टनर एस सिटी एंड स्नूनू। पर इस वक्त अगर आप टिकट बुक कर रहे हो अर्ली बर्ड ऑफर के साथ 30 कतरी रियाल का कैश बैक भी मिल रहा है। यानी कि एक तो फायदा अर्ली बर्ड ऑफर में वैसे ही डिस्काउंटेड प्राइस पे और ऊपर से 30 कतरी रियाल का कैश बैक। इस मौके का फायदा उठाओ और अपनी टिकट्स बुक कराओ और मस्त मौला गौरव के साथ अगला गाना सुनते जाओ के अलीशा चिनॉय की आवाज में मिर्ची पर। आई है धूम पिक्चर के पास पहुंच गए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
2: Who's most likely to die to protect you? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
3: I have few people, yes. Yeah. I can say they're my friends, they're my family. Like at least two people that I know. I'm not naming them, but they know
2: who they are.
3: Two people, they will die for me. Yeah, I'm blessed. I'm blessed.
1: जीशु सेनगुप्ता उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, because I will also. Yeah, you're listening to Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
4: Only on Mirchi. It's hot.
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। Supply.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

श्रीलंका से योहानी की आवाज में बॉलीवुड फिल्म का ये गाना बताता है कि इंडिया श्रीलंका में माहौल तो बनता है यार। पर उससे ज्यादा क्रिकेट फील्ड पे एग्रेशन। वेल, कल तो हमने देखा यशस्वी जायसवाल फर्नांडो के बीच धमासान, लेकिन डे टू वॉज ऑल अबाउट इंडियन टीम। हाँ जी, 300 पे 5 विकेट से शुरुआत करी और आते ही भाई साहब पहला विकेट तो गिर गया, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और ध्रुव जरन ने जो कमांड संभाली है इंडिया को कमांडिंग पोजीशन पे 503 रन तक पहुंचा दिया। ध्रुव जरन ने भी टेस्ट में अपनी दूसरी सेंचुरी बनाई और 503 पे इंडिया ने डिक्लेयर किया और श्रीलंका को 3 ओवर्स खेलने थे, लेकिन उसमें लहरू उडारा और प्रभात जयसूर्या दोनों बैक टू पवेलियन हो लिए एंड श्रीलंका डे टू पर बड़ा ही फीका प्रदर्शन करता नजर आया। टीम इंडिया के पास मौका है इस टेस्ट मैच को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक पोजीशन और ऊपर तक पहुंचने की, क्योंकि अगर फाइनल्स तक पहुंचना है तो अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सब बच्चे हैं भैया, क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला टाइम बताएगा। इन सबके बीच मस्मोला गौरव यह जरूर कहेगा कि क्रिकेट के जगत की तो बातें हो गई, लेकिन खेल जगत में हमारे कतर में भी माहौल जबरदस्त बन रहा है। यस, कतर की अपनी लीग की जो शुरुआत हो गई है, एंड अगर हम बात करें तो यस, कतर में इस वक्त जलवा बिखेर रहे हैं अपने बड़े बड़े खिलाड़ी एंड अंडर 19 हैंडबॉल टीम ने ईरान की टीम को हराया एशियन चैंपियनशिप में। यह कतर की टीम ने कमाल किया है और अंडर 19 टीम कमाल कर रही है, तो आने वाले टाइम में हम कुछ बड़ा देख सकते हैं हैंडबॉल में कतर की तरफ से। इन सब के बीच अगर मस्मोला गौरव बात करें तो यस, कतर में खेलों का माहौल अच्छा तो बना ही हुआ है। और तो और उस स्पोर्ट्स अरीना की तरफ अब जाने की बारी आ रही है जो अब फुटबॉल स्टेडियम से बन गया है बास्केटबॉल अरीना, एंड लड़ने वाली है दो टीमें यानी कि कतर एंड चाइना फॉर फीबा के लिए, एंड कह सकते हैं फुट लेग का राउंड है एंड आई एम श्योर बहुत कमाल होना है। कमाल तो नवंबर 27 से 29 के बीच भी होना है जब फॉर्मूला 1 एक बार फिर से कतर के लुसेल सर्किट पर उतरने वाला है, जिसकी टिकट आप अभी से बुक कर सकते हो, दोस्तों यारों को कह सकते हो, इसके लिए स्पेशल पैकेजेस भी लॉन्च हो गए। इतनी बातें याद दिलाते हैं, इसीलिए नाम है मस्मोला गौरव मिर्ची इट्स हॉट। एंड के सुनिधि का ये डेडली कॉम्बिनेशन यार, आई लव दिस सॉन्ग।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मेरा बॉयफ्रेंड बहुत फालतू के खर्चे करता है, इट्स वेरी कंसर्निंग। मैं क्या करूं?
1: अरे तो उसको बोलना तेरे से ब्रेकअप कर ले, अपने आप खर्चा कम हो जाएगा डार्लिंग।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: जानवरों के साथ ना कोई अन्याय होगा ना उन्हें कतर में कोई दिक्कत। मिर्ची पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, घड़ी का टाइम 7:04।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Well, बता दें मतार मतलब अरबिक में एयरपोर्ट भी होता है, एंड मतार दी कतर कंपनी फॉर एयरपोर्ट्स ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। उन्होंने ट्रांसपोर्ट टास्क फोर्स ऑफ यूनाइटेड फॉर वाइल्ड लाइफ एक इनिशिएटिव जो है जो कि फाउंड किया था हिज रॉयल हाइनेस प्रिंसेस विलियम द प्रिंस ऑफ वेल्स एंड द रॉयल फाउंडेशन। उन्होंने हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एक साथ मिलकर इस रोल को कॉम्बैट किया है जहां पर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकना है। यस, और कतर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसकी बकायदा साइनिंग सेरेमनी बकिंगम पैलेस डिक्लेरेशन में हुई एंड दोनों ने यह कमिटमेंट को पूरा किया है कि कतर के रास्ते इलीगल वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स कहीं नहीं जाने वाले, एंड कतर ने यह मेक श्योर किया है कि इसके मामले में हम जीरो टॉलरेंस पोजीशन को ही वैल्यू देंगे। वेल, हम आपको बता दें मतर्स पार्टिसिपेशंस ये बता रही है कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड एडवांस जो है वो हमारे कतर के एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सारी पॉलिसीज बनाई गई है, और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनाया है वो है जीरो टॉलरेंस पोजीशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। यानी कि वो लोग जो मासूम जानवरों को गलत रास्ते के थ्रू बेचते हैं, उन्हें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेजने की कोशिश करते हैं, कतर ने इसके खिलाफ एक मुहिम उठाई है। एंड मोर देन 14,000 एम्प्लॉयज अक्रॉस कतर एयरवेज ग्रुप, उन्होंने अपने अपने रोल्स पर पोजीशन पर इस मामले को एकदम सही तरीके से हैंडल किया, एंड वो अगर कुछ भी इस तरह का कोई भी दिखता है मामला वो तुरंत इंडिकेट करते हैं और मैनेजमेंट इस पर जल्द ही कार्रवाई करता है। और कतर में जीरो टॉलरेंस इस बात को सुनकर दिल गार्डन गार्डन है, क्योंकि यार हम इंसानों के साथ तो ये करते आए हैं लेकिन उन मासूम जानवरों की कोई गलती नहीं है, हम उनके साथ ये ना करें, इसे कतर ने मेक श्योर किया है, एंड आई एम श्योर ये बाकियों के लिए एग्जाम्पल है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
1: आप ढूंढ रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम इंसान का तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़
2: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो।
2: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

जीरो मिले या वन, बदलेंगे नाम टीचर चाहे बदलती रहे। भैया अपने स्कूल में तो यही थी कहानी, टीचर जीरो दे या वन, हमारा सिर्फ शैतानी में ही लगता था मन। वेल, इन सब के बीच आज के बच्चों के लिए मैं अलग अलग बातें देखता हूँ तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब जैसे देखिए, बैग को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक एडवाइजरी इशू की है और कह रहे हैं पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के लिए जब बैग लेने जाओ तो बच्चों के लिए ऐसा बैग लो जो उनके कंफर्ट को, उनके बॉडी पॉस्चर को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। एक हमारा दौर था, पहले तो वो एल्युमिनियम वाली पेटी, वो मेटल बॉक्स लेके जाते थे, फिर कैनवस बैग्स आ गए और आजकल के बच्चों के लिए ड्रैग करने वाले बैग, मतलब बस स्कूल बस में चढ़ाओ, उतारते ही उसको सूटकेस की तरह ड्रैग करके ले जाओ। लेकिन यार वो दौर भी अलग था, ये दौर भी अलग है। यहां पर बच्चों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने सारे पेरेंट्स से कहा है अनसुटेबल बैकपैक्स बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये उन्हें बैक पेन देता है, उनके पॉस्चर में प्रॉब्लम लाता है और शोल्डर स्ट्रेन अलग से करते हैं। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी है। एक तो 10-15% वाला रूल, यानी कि आपके बच्चे का वेट अगर 35-40 केजीज के बीच में है तो उसका जो जनरली बैग होना चाहिए वो अराउंड 3-4 केजीज होना चाहिए भरने के बाद, और मैक्सिमम अप टिल 5 केजीज, ये आपको देखना है। डबल पैडेड वाइट शोल्डर स्ट्रैप लीजिए ताकि बैक को सपोर्ट मिले और बैलेंस वेट जो है स्पाइन को प्रोटेक्ट करता रहे। इन सब के बीच एक मल्टी कंपार्टमेंट बैग वाली प्रोटिप दी गई है जिसमें बुक्स जो है स्पाइन के पास रख सकते हैं और वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग कंपार्टमेंट अलग बैग में चीजें रख सकते हैं। वेल, कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं, यह दौर अलग है, लोग बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान देते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इसीलिए गाइडलाइंस इशू की है। थैंक यू MOPH। अगर आप हमारे दौर में होते तो शायद हमें भी 2-4 बैग और ज्यादा मिल जाते, वरना अपना वाला बैग क्लास 1 से लो तो क्लास 5 तक चल ही जाता था। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: रेडियो कतर, 6 decades of excellence in कतर। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: गए।
1: क्या आप भी कतर में बहुत सारा डेटा खाते हैं एंड स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है? तो आपकी गलती नहीं है सर। ये तो हमारे कतर के हाई स्पीड कनेक्टिविटी की वजह से है।
2: #974
1: बता दे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ICT डेवलपमेंट इंडेक्स में कतर की स्कोरिंग है 98.4% आउट ऑफ 100। याने कि कुल मिलाकर हमारा कतर एकदम जबरदस्त तरीके की हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है, और इसीलिए आप लगातार लाइव स्ट्रीम और रील स्क्रॉल करते रहते हो और हाइपर कनेक्टेड रहते हो। अब जब 98.4% आएगा तो ये होने ही होने। वैसे दुनिया का ग्लोबल एवरेज अराउंड 79 है और हमारे कतर में इट इज 98.4। अब समझिए कि दुनिया में बाकी लोग जहां 78 के आसपास वाला इंटरनेट लेते हैं, वहीं हम 98.4% आउट ऑफ 100 वाला इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और उसी का रीजन है कि हम लगातार रील पे रील सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ, जीरो बफरिंग वाइब्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं, नेक्स्ट टाइम जब आप कतर में ना कुछ भी स्क्रॉल कर रहे होगे, स्ट्रीम कर रहे होगे, तो याद रखना आप दुनिया के अल्टीमेट टेक हब में रह रहे हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी तेज है जो दुनिया के सिर्फ चंद देशों के पास है। इसीलिए आप डेटा ज्यादा खाते हो, लेकिन मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग खाना खाओ, आंखों को मजबूत बनाओ, थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी दिया करो। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

जब करे ये माइंड रीडिंग लगती है ठाई। गुरु अहमदाबाद जोनिता गांधी की आवाज में लगती है ठाई गाना तो गया, लेकिन मस्त मौला गौरव इतना कहेगा कि मेंटली सुहानी शाह जब हमारे दिमाग से खेलती है तो ये भी ठाई कर देती है। एंड इसके लिए आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है 25th of September QNCC में दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। यस, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर एंड प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि ये दिमाग को पढ़ती हैं, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि ये जो भी कर रही हैं सब सच लगता है, लेकिन यही तो असली खेल है दोस्त, यही तो मैजिक है जो हमें और आपको विटनेस करना है कि ये कैसे करती हैं। वेल, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी टिकट्स बुक कर रहे हो और एस सिटी स्नूनू पर बाकायदा आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिल रहा है टिकट बुक करने पर, तो अली बर्ड ऑफर का फायदा उठाओ, अपनी टिकट्स बुक कर लो, 30 कतरी रियाल का कैशबैक ले लो। एंड मस्त मौला गौरव को थैंक यू कह रहा हूं जो इस तरह की बातें याद दिलाता है। और हाँ, ये शाम मेंटली सुहानी शाह की तो है, लेकिन इनका साथ यानी कि एंटरटेनमेंट को और बढ़ाने के लिए चरण एंड डांसर आशी हमारे कतर आ रहे हैं। एंड अगर आप इनके बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो बता दूं, इनका एक गाना बादशाह के साथ आया और इन दोनों ने जो धमाल मचाया है डांसिंग एंड सिंगिंग डुओ बनकर, वो कमाल है। एंड ट्रस्ट मी, जब ये स्टेज पर होंगे सब कुछ अलग सा हो जाएगा। चलिए जी, अपने टिकट्स बुक कर लीजिए दी मेंटली सुहानी शाह का शो और एंटरटेनमेंट का धमाल विद चरण नासी, इस उम्मीद में कि आपने अपनी टिकट्स बुक करा ली। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में, शानदार बातें, शानदार गाने एंड ढेर सारा मस्ती फन। तब तक ले हबीबी मा सलामा, मिर्ची इट्स हॉट, हरारा कतीर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
2: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है। प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
1: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: खाना खाने के 2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है। क्या करूँ यार, थक गया हूँ।
1: ओ मैन, इट्स सो सिंपल यार, घड़ी देखना बंद कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फैंटास्टिक।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in.
5: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है काना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। दिस इज रंग बरसे
6: नंबर 20।

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थी, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे भाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए, कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है, तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप जिसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी
2: विवेक जी
1: हाँ जी बताइए
2: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो 2 मिनट आपके ले लूँ मैं विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मज़े अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासेज क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
1: हाँ ठीक ही कह रहे हो
2: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
1: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है एक तो सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
2: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो मैं ध्यान रखता
2: हूँ ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन
1: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
2: क्या हुआ क्या था भाभी से आपकी बात क्या हो गई थी
1: अरे कुछ नहीं यार
2: नहीं फिर भी क्या मतलब काफी चीखों की आवाज है क्या हुआ क्या था
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी थी बस हमारी मिसेस की
2: अच्छा अच्छा
1: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
2: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
1: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत
2: आप कह रहे हो चिल्लाई चिल्ला के बोला क्या आपको आप बताओ ना मजे आ रहे हैं मेरे को बताओ ना क्या हुआ फिर
1: मजे आ रहे हैं
2: बताओ ना क्या बोला क्या बोला
1: अरे
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: माशूका, एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहिए, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूं, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और एआर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना, या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माई रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से। 20 Rewind.

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। दे फॉरगॉटन अबाउट इट। जेलसी को पैशन बना दिया है, पोजेसिवनेस को प्यार, स्टॉकिंग को पर्सिस्टेंस और मैनिपुलेशन को रिलेशनशिप टेस्ट। कभी कभी चीटिंग को भी ट्रू लव कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। लेकिन शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे। रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्रायंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। एंड दैट इज व्हाट कॉकटेल 2 ट्राइड टू एक्सप्लोर व्हेन आई वॉच्ड इट ऑन OTT। यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए दैट ऑडियंस रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं। वी डोंट वॉन्ट टॉक्सिक लव, बट फ्रॉम टॉक्सिक लव आई वॉन्ट टू प्ले स्वीट इनोसेंट लव। बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया। इट्स माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अमाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग इट वाज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रॉमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माई वॉइस। Someone comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also. Not everyone has the blessing of God also. And not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, is gaane ke liye bhi usne mere liye ladai ki hai. Usne bola hai sabko, are Amal ne itna achha gaya hai, mujhe kyun gawa rahe? To maine bola, aisa mujhe chahiye. I said, in log kisi ki bhi nahi hai, I said, meri requirement hai that you at least see if you like the song, pura ban gaya, check it out. So it was just about 3-4 months before abhi that song came that he started recording and revisited the song 2-3 times.
0: Aur aaj, gehra hua ko peeche chhod kar, wahi awaaz phir se number one ban gayi hai. This is Ye Awarapan. The new undisputed number one song on the Mirchi Top 20.

0: ये आवारापन मिर्ची डॉट 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिलो दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल, दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हाँ भाई, मिर्ची हेल्पलाइन से बात हो रही है।
3: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: अरे भाई, मेरी बीवी कहती है मैं जब से मैनेजर बना हूँ तब से खड़ूस हो गया हूँ। घर पे भी ऑफिस की तरह बिहेव करता हूँ, जरा भी रोमांटिक नहीं रहा। अब क्या करूँ भाई मैं?
3: अरे तो सिंपल है ना, ऑफिस में रोमांटिक बनना स्टार्ट कर दे।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, मेरा नाम है श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, मेरी और मेरी मम्मी की ना हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होती है। मेरी मम्मी हमेशा एक चीज का ताना मारती है कि अरे अब तो कोई फैशन स्टेटमेंट बनता ही नहीं है, अब के जो सेलिब्रिटीज हैं, अब के जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होती थी। मतलब अगर शर्मिला टैगोर ने कुछ पहन लिया, शबाना आज़मी ने कुछ पहन लिया या हेमा मालिनी ने कुछ पहन लिया, वो हम सारी लड़कियां कॉलेज में फॉलो करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसी बात है तो ज़रा ढूंढा जाए कि आखिर किस किस ने, कौन कौन सी हीरोइंस ने एक्चुअली में कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को पॉपुलर किया और वो आज तक फॉलो होता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर। अभी बताऊंगी, वापस हम श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: कौन?
4: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात, और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाजें आ रही है? मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
4: भैया आहिस्ता बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहे
4: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
3: नहीं बोलना, नहीं बोलना।
4: भाई साहब एक बात बताऊँ?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है
4: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: ओके ओके,
4: आई लव यू।
3: आई लव यू टू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aasi. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये बेल बॉटम पैंट्स जो हम लड़कियों को बहुत पसंद है ना आजकल, ये एक्चुअली में सबसे पहले पता है कौन लाया था? शर्मिला टैगोर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। शर्मिला टैगोर ने कई सारी अपनी फिल्मों में ना ये बेल बॉटम पैंट्स पहने, और उसके बाद मेरी मम्मी बताती हैं कि कॉलेज में लड़कियां वही पहन करके आती थी, उनका वाला विंग लाइनर लगा करके। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे जो कुर्ताज जो कि फ्लारी प्रिंट वाले होते हैं ना, वो भी सबसे पहले शर्मिला जी लेकर के आई थी। पुरानी जीन्स पे ना आज मैं वो हीरोइंस के सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स ढूंढ करके लाई हूँ जो उस जमाने में पहने गए या उस जमाने में किए गए और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। सो कम राइट बैक, अभी बताऊंगी हेमा मालिनी जी का फैशन स्टेटमेंट।

ओवरसाइज सनग्लासेस हम सबके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो कि यू नो बहुत ही कूल लगते हैं आजकल. लेकिन आपको पता है कि ओवरसाइज सनग्लासेस, ग्लेयर्स, गॉगल्स या जो भी कह लो, वो सबसे पहले पता है कौन सी हीरोइन ने पहने थे? हेमा मालिनी जी ने. पुरानी जीन्स पे. हाय, मैं हूँ श्रेया. मैं बता रही थी ना कि एक दिन मेरी और मम्मी की बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि श्रेया, जो भी फैशन स्टेटमेंट तुम लोग आज करते हो ना, वो हमारे टाइम की हीरोइंस ने किए थे और हम सब लड़कियां कॉलेज में या हॉस्टल में फॉलो किया करते थे. तो जब मैंने जाकर के थोड़ी रिसर्च की और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो ओवरसाइज एकदम आधे चेहरे को ढकने वाले जो सनग्लासेस है ना, वो सबसे पहले ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी इंडस्ट्री में लेकर के आई थी. एंड नॉट जस्ट दैट, वो वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, चटक ग्रीन, ये भी उनपे बहुत खूबसूरत लगता था. प्रिंटेड लहंगास, पहले जो हीरोइंस थी वो एक्चुअली में मोनो कलर पहनती थी यानी सिंगल कलर, लेकिन हेमा मालिनी जी अपने फैशन के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती रहती थी. सो प्रिंटेड लहंगास भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे. सो अभी मैं बताऊंगी कि रेखा जी से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी. वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

दो चोटी चटक रेड लिपस्टिक के साथ। मम्मी बताती है कि उनके हॉस्टल में ना एक टाइम के बाद सारी लड़कियां दो चोटी और साड़ी पहन के आती थी, दो चोटी और सूट पहन करके आती थी और उस पे रेड लिपस्टिक, पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और मैं बता रही थी ना कि कैसे एक दिन मेरी और मम्मी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आपके जमाने के हीरो हीरोइंस क्या स्टाइल स्टेटमेंट लाएंगे, फैशन स्टेटमेंट लाएंगे, जो हमारे टाइम की हीरोइंस लेकर के आती थी और हम सब उसे फॉलो करते थे। सो खूबसूरत फिल्म अगर आप देखो, सिलसिला देखो, आपको रेखा जी दो चोटियों में दिखेंगी और वो भी साड़ी पे दो चोटियां। सो मम्मी बताती है कि जैसे ही खूबसूरत फिल्म आई रेखा जी की, सिलसिला आई जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक लगाई है ना, हर लड़की कोशिश करती है बन के ठन के आने की। वैसे रेखा जी के ना और भी स्टाइल स्टेटमेंट्स थे जो पॉपुलर हुए, बताऊंगी उनके बारे में भी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: हाँ, मुझे रनिंग शूज चाहिए और इसके लिए मैंने इतने वीडियोस देखे कि वीडियो देखते देखते थक गया। समझ नहीं आता क्या करूँ।
2: अरे तो अब फुट मसाज के वीडियो देखना, थकान दूर हो जाएगी और क्या।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना, वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है, एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो, एंड सो मैनी ऑफ देम। भाई, शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की। वेल, आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी, हाउ अबाउट ज़ीनत अमान। तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar this 25th September at QNCC and to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डिंपल कपाड़िया के दो क्यूट जूड़ाज। आपको पता है किस नाम से फेमस हुए थे? बॉबी जूड़ाज। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। तो मैं बता रही थी कि कैसे मेरी मम्मी ना उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके टाइम पे भाई फैशन स्टेटमेंट्स जो हीरोइंस लेकर के आती थी वो हर लड़की फॉलो करती थी, और स्पेशली मम्मी के कॉलेज और हॉस्टल में तो डेफिनेटली फॉलो होते थे। सो शी वाज टेलिंग मी कि डिंपल कपाड़िया जब बॉबी फिल्म में आई, अगर आप देखो ना फिल्म, तो उन्होंने कई सीन्स में दो क्यूट जूड़ा बनाया है, मतलब एकदम मिडल पार्टिंग करके अपने बालों के साथ। शी सेड कि वो इतने फेमस हुए कि हम सारी लड़कियां कॉलेज में ना वो छोटे छोटे जूड़े बना के जाते थे। वैसे जीनत अमान और किस चीज के लिए पॉपुलर हुई थी अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल क्योंकि मिर्ची लेके आ

मिनी ड्रेसेस ले लो, जंपसूट्स ले लो, हॉल्टर नेक ले लो या फिर शिमरिंग साड़ी ले लो, ये सब लाने वाली थी जीनत अमान। पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया, जो उस जमाने की हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट, स्टाइल स्टेटमेंट्स की भी बात कर रही है जो इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। सो जीनत अमान ने कई सारी फिल्मों में जंपसूट्स तो पहने ही हैं, साथ में मिनी ड्रेसेस, जो उस टाइम हीरोइंस बहुत कम पहनती थी, वो जनरली साड़ीज में ज़्यादा दिखा करती थी। पर जीनत अमान ऑफकोर्स बहुत ही बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी, तो शी वॉज द वन जो एक्चुअली में मिनी ड्रेसेस लेकर के आई थी हमारी इंडस्ट्री में, और उसके बाद ना लड़कियों ने उन्हें जम करके फॉलो किया था। वैसे ये डिस्को ईरा वाला वो जो शिमरिंग ड्रेस है जो हम पार्टीज में पहनने की कोशिश करते हैं, ये कौन लाया था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हेलेन इतना एक्सपेरिमेंट करती थी अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, आज तुम हर पार्टी में वो शिमर वाली ग्लिटर वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करते हो ना टू स्टैंड आउट। एक्चुअली में हेलेन जी ने ये शुरू किया था क्योंकि उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे कैबरे सॉन्ग्स किए हैं ना, आशा ताई की आवाज होती थी, हेलेन जी का ग्लैमरस सेंसुअल डांस होता था और साथ में उनकी एकदम सीक्वेंस वाली शिमर वाली ड्रेस होती थी। कई बार तो वो फेदर्स को भी अपने बालों में लगा लेती थी, विच लुक सो क्यूट। सो पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, श्रेया के पास होंगे। सो कम राइट बैक।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है?
0: यार, मेरी ऑफिस में कोई कुछ काम ही नहीं करता, सब एक दूसरे को काम चिपकाते रहते हैं, क्या करूं मैं?
1: अब ये सोचने का काम भी तू मुझे चिपकाएगा?

मुमताज साड़ियां तो आज भी चलती हैं पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया। और आज ना उस जमाने की हीरोइंस जो फैशन स्टेटमेंट लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, बस उनकी बात हो रही है। सो एक तो मुमताज जी साड़ियों को एक डिफरेंट तरीके से ड्रेप करने का फैशन लेकर के आई थी। उनकी जनरली साड़ी स्पेशली इन द सॉन्ग बिंदिया चमकेगी, अगर आप ये गाना देखोगे ना तो उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सैफ्रन कलर है राधा, और उसको ना राउंड राउंड राउंड करके उन्होंने पहना है और उसपे उन्होंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मेरी मम्मी बताती हैं कि ये जो साड़ी थी वो मुमताज साड़ी के नाम से फेमस हुई। और मुझे लगता है कि आज भी जब हम वो रेडीमेड साड़ीज लेते हैं या फिर ऐसे ड्रेप कराते हैं ना, अगर आप किसी सैलून में जाओ, आप एक्चुअली में अगर बोलोगे कि मुमताज साड़ी की तरह ड्रेप कर दो, तो स्टाइलिस्ट को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी साड़ी आपको पहनानी है। That was the craze. So, पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, so come right back.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी
4: विवेक जी
3: हाँ जी बताइए
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
3: क्या है ऑफ कोर्स
4: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम
0: है के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी
4: विवेक जी
3: हाँ जी बताइए
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें

0: गरम चिल्ला हो रही थी। विक जी बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार। मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना। और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं। लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
0: नहीं मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, सोसाइटी वाले इतने। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
0: अच्छा
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता। हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
0: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान
0: रखूंगा, ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
1: हाँ जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
0: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
0: नहीं फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी होगी आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
0: अच्छा अच्छा।
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
0: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: रेडियो
2: मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

पोल्का डॉट्स, बाप रे, ये तो मुझे लगता है शर्मिला जी ने भी पॉपुलर किया है और मुमताज जी ने भी, हेमा मालिनी ने भी कई सारी फिल्मों में पोल्का डॉट्स पहने। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड पोल्का डॉट्स आज भी इतने क्यूट, इतने चिक, इतने सुंदर लगते हैं, इतने कूल लगते हैं रादर। और ये जो प्रिंट था ना, ये हर हीरोइन ने पॉपुलर किया था, फिर चाहे वो शर्मिला जी हो, हेमा मालिनी हो, नीतू सिंह हो या फिर मुमताज हो। So, आज ना उन्हीं फैशन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो उस जमाने में आए और इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। वैसे वापस आओ, कौन सा हेयर स्टाइल था जो एक्चुअली में एक हीरोइन के नाम पे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम सैलून जाकर के कहते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल, इस हीरोइन का हेयर स्टाइल चाहिए। बताऊंगी वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: वेकेशन ओवर हुआ है, अब जाना होगा स्कूल। लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल। बैग्स ऑन योर शोल्डर्स, एनर्जी रखना फुल, क्योंकि मिर्ची लेके

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

बैंग्स कह लो, फ्रिंज कह लो, ये सब लाने वाली थी साधना जी पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वो सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स जो उस जमाने की हीरोइंस लाई और हमने इस जमाने तक आज तक हम उनको ट्राई करते हैं, उनको पहनते हैं। इनका माथा बहुत चौड़ा था, तो एक्चुअली में डायरेक्टर साहब ने इनसे कहा था कि ये ना अपने माथे को ढकने के लिए कुछ आगे के बाल कटवा लें, और साधना जी ने जब ये किया तो उनकी स्टाइल इतनी फेमस हुई कि कॉलेज की हर लड़की उस समय बैंग्स, तब ये बैंग्स नहीं कहे जाते थे, इनको साधना हेयर कट कहा गया था, जो आज भी इस नाम से चलता है, कभी कभी हम इन्हें बैंग्स कह देते हैं, कॉलेज की हर लड़की, हाँ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, फोरहेड पे थोड़े से बाल कटवा करके साधना कट ही लेके घूमती थी। पुरानी जीन्स पे आज उस जमाने की फैशन की बातें हो रही है, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: डेली बेली, जलसा, ब्राउन जैसे कंटेंट के क्रिएटर मिस्टर अभिनय देओ
4: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल, मतलब तह तक। जवाब वो बताओ।
5: वेट
4: टेल,
5: आई हैव अ लिस्ट। भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसने तो ही बेटर है। बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं, सब बाल की खाल निकालने वाले ही है। कंटिन्यू व्हाट आई मीन, ही इज पास्ड अवे, बट माय फादर, माय गॉड, एनीथिंग दैट आई डू, एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज, बट ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, फिल्म है, इमेजिन। नो, बट व्हाई? एंड ही वाज अ फिल्म मेकर, एन एक्टर हिमसेल्फ।
3: अभिनय देओ द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश देओ, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

पुरानी जीन्स पे आप खुश रिया के साथ एंड टाइम जब आप और मैं बैठेंगे गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे एंड वी विल हिट द हाईवे। अच्छा एक बात बताऊं, आपके साथ ऐसा होता है आप किसी को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, जता नहीं पाते हो जब वो इंसान सामने होता है, और अगर वो इंसान सामने नहीं होता है, वो जैसे ही गायब होता है, तो एक्चुअली में फील होता है कि यार ये जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट बंदा है हमारे लिए। लेकिन ये वाली फील आती है किसी के जाने के बाद, थोड़ी देर के लिए जब वो गायब होता है ना, तो न जाने क्यों होता है जिंदगी में। कमिंग अप यही गाना आपके लिए, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया, गुड नाइट।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।